0: வந்தே மாதரம்.
1: சுஜல சுஃபலா மலய ஜீதலா.

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 22, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026 ईस्वी। सुबह के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल

0: 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

भारत माता ग्राम वासनी अर्थात मां भारती का साक्षात रूप हमारा ग्राम है, क्योंकि भारत मां गांव में बसती है। अतः ग्राम का पूर्ण शिक्षित होना राष्ट्र का शिक्षित होना समझा जाता है।

हमारा ग्राम जितना समृद्धशाली होगा, हमारा देश भी उतना ही समृद्धशाली बनेगा। बापू का सपना गांव की समृद्धि में ही निहित है, इसीलिए तो आजादी की शंख ध्वनि महात्मा गांधी द्वारा गांव से ही आरंभ हुई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद लोग गांव की ओर आने लगे और आजकल तो गांव चलो का आंदोलन एक जरूरी अंग बन गया है। सभी ये अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के सच्चे हमारे गांव हैं, जहां हम सबों की रक्षा होती है। गांव के लोग प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, पर उन्हें इस आनंद भरे जीवन का पता नहीं रहता। ग्रामीण इलाके की नर नारियां, वृद्ध बच्चे वैसे ही किसी अनजान व्यक्ति के प्रवेश करने पर निहारने लगते हैं जैसे प्यासा एक बूंद पानी के लिए निहारता है। उनकी चाहत जाने बगैर कोई इस राह से गुजर जाता है तो वे हाथ मलते रह जाते हैं। दो मीठी बोलियों के लिए जैसे वे उन्हें एकटक निहार रहे हों, वे अपनी बातों को उन तक रखने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि किस तरह उनसे बातें की जाएं। इसी माहौल में यदि कोई पढ़ा लिखा युवक है तो ग्रामीण उसी को पदाधिकारी के पास बातें करने, आवेदन लिखने इत्यादि का भार सौंपते हैं। यदि वह युवक इनसे बेईमानी करे तो भला वे सीधे साधे अनजान बने लोगों का क्या कसूर है। पर आज स्थिति कुछ बदली नजर आती है। ग्रामीणों में एक नई ललक पढ़ाई लिखाई के प्रति देखी जा रही है। बूढ़े बूढ़ियां भी स्लेट पेंसिल लेकर गांव के पढ़े लिखे व्यक्तियों के साक्षरता केंद्रों पर पढ़ने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। वे जब एक शब्द लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो मानो वे खुशी से झूम उठते हैं और नए शब्दों को जानने के लिए अपने मास्टर बने बच्चों से बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं। वे उस समय उस नन्हे से शिक्षक को अपना सच्चा गुरु मानने के लिए विवश हो जाते हैं। सचमुच ये शिक्षा या सीखना जो शब्द है वो किसी से भी सीखा जा सकता है। सीखने में उम्र की बाध्यता नहीं होती, न सीखने में ही और न सिखाने में ही। सीखना और सिखाना जीवन पर्यंत चलने वाला घटना चक्र है। कभी हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमें भी वो अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीख देता है। उससे भी इसकी जानकारी लेकर अपने जीवन में उतारना सीखना ही है। जरा सोचें, जो वृद्ध नर नारी आज साक्षरता केंद्रों के खुलने पर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, क्या वे अपने गुजरे समय में काम धाम खेती बाड़ी या लेन देन नहीं करते थे? संभव है हम पढ़े लिखे व्यक्तियों से गलतियां हो जाती हैं, पर एक अनपढ़ खूब सोच विचार कर सही ठेपा लेन देन करता है। वो सैकड़ों बार मनन चिंतन कर दूसरों से पूछताछ कर पढ़े लिखे व्यक्तियों से संपर्क कर ऐसा काम कर दिखलाता है जिसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होती। पर उसे चिट्ठी या आवेदन को दूसरों से लिखवाने की बाध्यता होती है, जिसे हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम साक्षरता मिशन पूरा कर रहा है। आज गांव में अशिक्षा रूपी गुलामी से हर व्यक्ति अपने को आजाद कर रहा है, जो ग्रामीण लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे ग्रामीण जब साक्षर हो रहे हैं तो निश्चित ही इसका लाभ हमारे राज्य और राष्ट्र को प्राप्त होगा। अब वे अपना हानि लाभ समझते हुए सभी कार्यक्रमों को सही दिशा देने में अपना योगदान देंगे। आज बापू का सपना साकार होता नजर आ रहा है। सचमुच अशिक्षित रहना देश समाज का कलंक है। इस कलंक से हम आज छुटकारा पाने की दिशा में प्रेरित हैं। अब सफलता हमारे कदम चूम रही है। गांव खुशहाल होगा तब हमारा देश और समाज भी खुशहाल होगा। इस खुशहाली को बहाल करने के लिए साक्षरता कर्मियों का योगदान हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा।

ये था कार्यक्रम चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कुछ शिव भजन। यह है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ शिव भजन।

और इस शिव भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के तहत आइए जानकारी लेते हैं आज प्रसारित होने वाले बाकी के कार्यक्रमों की।

हमारी आज की सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग, जिसके तहत आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ लोक भजन। विविधा कार्यक्रम का समय है 7:20 और 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कुछ भजन। 10 बजे से पेश किया जाएगा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग और 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। आज शाम 4:30 पर आप सुनेंगे

शाम 5:02 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेती बाड़ी और 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंगना। 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। रात 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी योजना। रात 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की।

0: संख्यायाः एकम् अष्ट शून्यम् शून्यम् एकम् एकम् सप्ताष्ट शून्यम् शून्यम् इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्तमञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य चतुर्विंशति दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारम् अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीशाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव एपीएमसी संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम एपीएमसी परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते जीएफएस गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु एकादश भारतीय नागरिकेषु दश नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षा कार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ लोक भजन। सबसे पहले ये जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लोकरंग कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं सियाराम पासवान और साथियों से ये लोक भजन।

0: उदय पासवान के स्वर में इस लोक भजन के साथ ही आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता का कार्यक्रम विविधा। विविधा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे भारतीय साहित्य में सामाजिक समरसता विषय पर डॉक्टर सुबोध सिंह शिवगीत से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है परमेंद्र कुमार मिश्रा। तो आइए सुनते हैं इस भेंट वार्ता का पुनर्प्रसारण।
1: श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहित्य के माध्यम से समाज उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता है और समाज विकास करता है। साहित्य एक पतवार की तरह होता है जिसमें समाज के लोग उस नाव में बैठकर भावसागर रूपी संसार से पार करते। आज हमारी बातचीत हो रही है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक सुबोध सिंह शिवगीत जी से। तो सबसे पहले सर आपको नमस्कार।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: आप हमें ये बताइए कि जो साहित्य है उस साहित्य का क्या योगदान हमारे समाज में।
2: साहित्य जो शब्द है उसके अंदर ही समाज है। साहित्य शब्द सहित शब्द से बना है। सहित अर्थात जो सबों को साथ लेकर चले, जिसको अंग्रेजी में हम विथ कहते हैं। सहितस्य भाव साहित्य अर्थात जो सबों के हित की भावना जिसमें निहित हो वह साहित्य है। इसलिए आपके प्रश्न का सहज उत्तर यही है, साहित्य वही है जो समाज को लेकर चले, समाज को जोड़कर चले, समाज को बनाने का काम करे। आज आप दो दृश्य आपके सामने है, एक साहित्य एक राजनीति। राजनीति समाज को तोड़ती है और तब सत्ता हासिल करती है, और साहित्य समाज को जोड़ता है तब

0: उसमें दया, प्रेम, ममत्व, सौहार्द, सहिष्णुता, अपनत्व का रंग घुलता है।
1: मतलब यूं कहा जाए कि समाज के टूटे हुए ईंट और टूटे हुए इमारत का मरम्मत भी करता है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां और जो विसंगतियां हैं उनको भी समाज से दूर करने के मुहिम में साहित्य और हमारे जो साहित्यकार हैं उनका काफी योगदान रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: एकदम अनादिकाल से आज समाज के पास जो भी रोल मॉडल है, चाहे वो आपके राम हों, आपके कृष्ण हों, सारे के सारे कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ये साहित्य की उपलब्धि है, साहित्य के देन है। साहित्य ने आपके सामने यह रखा है कि साहित्य समाज को कैसा होना चाहिए। अगर समाज को राम की तरह बनना है तो राम के जीवन को आज समाज में स्थापित करने का, राम के जीवन के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को समाज में स्थापित करने का, अगर हमको राम की तरह बनना है तो राम के अंदर के जो भाव हैं उन भावों को समाज के अंदर बिठाने का, ये सारा का सारा काम चाहे ऋग्वैदिक साहित्य हो, लौकिक साहित्य हो, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, प्राकृत, अपभ्रंश, जो 5000 वर्षों का जो साहित्य का इतिहास है हमारे बीच, प्राचीन भारतीय भाषाओं का साहित्य, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का साहित्य या आधुनिक भारतीय भाषाओं का साहित्य आपके सामने प्रमाण है। उसको उठाकर आप देखिए तो लगेगा कि समाज को जो बर्बर समाज था, जंगलों में रह रहा था, उस जंगल में रहने वाले समाज को इतने उन्नत शिखर तक पहुंचाने की दिशा में अगर किसी ने सबसे अधिक श्रमदान दिया है तो वह साहित्य है और वो साहित्यकार। इन साहित्यकारों की ही कृपा है कि हम वनमानुष से महामानव बनने की दिशा में चल चले। कल हम जंगलों में रह रहे थे, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा को झपट लेने के लिए तैयार थे, उससे हम आगे बढ़े, मानव बने, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा की दुनिया में आए और आज हम देवत्व की दुनिया में बढ़ने के लिए कृत संकल्प हैं, जो साहित्य ही सिखा रहा है कि तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। ये जो विराटता की भावना है, स्व और पर को मिटाकर हम की जो भावना का विकास हो रहा है कि ये तेरा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ इस सृष्टि का है, हमको आपको इस दुनिया का विकास करना है, समाज का विकास करना है, हम इस धरती पर आए हैं कुछ करने के लिए, ये सारे जो श्रेष्ठ भाव हैं, इन सारे श्रेष्ठ भावों को समाज में अपने साहित्य के माध्यम से पिरोने का काम साहित्य करता है, जिसकी वजह आज हमारा समाज, विश्व समाज, आप गौर कीजिएगा कि धर्म अपने अपने देश में बटे हुए हैं, संस्कृतियां अपने अपने देश में बटी हुई हैं, मगर साहित्य विश्व का होता है। जब हम लिखते हैं तो हम पूरे मानव समाज के लिए लिखते हैं, इसलिए समाज का जो सबसे बड़ा स्वरूप हो सकता है विश्व समाज का, उस विश्व समाज के निर्माण की दिशा में साहित्य करता है। तुलसीदास ने नहीं लिखा कि ये भारत का साहित्य है, विश्व का साहित्य है। हमारे ऋषियों ने ये नहीं लिखा कि हिंदू भवंतु सुखना, मुस्लिम भवंतु सुखना, क्रिश्चियन भवंतु सुखना, उन्होंने लिखा सर्वे भवंतु सुखना, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना, क्रीड़वंतो विश्वमार्यम, भूमि को माता कहा तो भारत की भूमि को माता नहीं कहा, पूरे विश्व की भूमि को माता कहा। अर्थात आप चाहे ऋग वैदिक साहित्य देखिए, वैदिक साहित्य देखिए या वर्तमान आधुनिक साहित्य देखिए, हमारे तुलसीदास ने भी लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। ये परहित क्या है? क्या भारतीय समाज का हित है? विश्व समाज का हित। अर्थात आप वसुधैव कुटुंबकम को देख लें, सर्वे भवंतु सुखिना को देख लें, या फिर जयशंकर प्रसाद के इन दो पंक्तियों को याद रखें जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि औरों को हंसते देखो मन, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। ये हमारे आधुनिक काल हिंदी का कवि लिख रहा है शंकर प्रसाद, कि अपने सुख का विस्तार करो, ये तुम्हारे सुख में जब हम सुखी होने लगेंगे, तुम्हारी हंसी में हम हंसने लगेंगे, तब ये सुख का विस्तार होगा, और ये सुख का जब विस्तार होगा तभी हम जग को सुखी बना सकते हैं। ये जग को सुखी बनाने का संदेश कोई राजनीतिज्ञ नहीं दे सकता, कोई धार्मिक नेता नहीं दे सकता, यह जग को सुखी बनाने का संदेश कोई न कोई साहित्यकार ही दे सकता है जो समाज के निर्माण के लिए दिन रात तपस्या में रत रहता है। कहा जाता है कि साहित्यकार भी एक कलाकार है, कि जो अपने आज की कीमत पर, यानी अपना आज गंवा के खुद भूख से मर रहा है, बिलबिला रहा है साहित्यकार रचनाकार, जो अपने आज की कीमत पर तुम्हारे लिए कल को देता हो आकार, वही है कलाकार, वही है कलाकार। साहित्यकार यही कलाकार है जो अपना आज गंवा कर, आप निराला का जीवन देख लीजिए, जीवन भर दुख से गुजरा, आप तुलसी का जीवन देख लीजिए, जीवन भर दुख से गुजरा, मगर उन्होंने दिया क्या समाज को श्रेष्ठ चीज। आज जिन छोटी छोटी असुविधाओं में लोग उग्रवादी बन जाते हैं, आप गौर कीजिए कि तुलसी के जीवन में बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तो दुख ही दुख मिला, मगर उस दुख के बदले समाज को दिया क्या सुख ही सुख दिया। निराला को जीवन में दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही कहने वाला निराला, समाज को क्या दिया, सुख ही सुख।
1: आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हमारे जो विभिन्न काल के माध्यम से जो हमारे जितने भी रचनाकार हुए, चाहे वो भक्ति काल हो या वीरगाथा

0: हर काल हो, सभी काल में अलग अलग साहित्यकारों का पदार्पण हुआ और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया।
1: जी जी
0: मेरा ये कहना है कि आज ही समाज में लोगों का नैतिक पतन हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे जो साहित्यकार हैं उनकी क्या भूमिका है और हमारे साहित्य की क्या भूमिका है इस क्षेत्र में, कुछ कहें।
1: देखिए, अब व्यवस्था बदल गई है। आप अपने विश्वविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक का सिलेबस देखिए, इस सिलेबस से साहित्यकार हटा दिए गए। आज पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक में कई जगह तुलसीदास पढ़ाए जा रहे हैं, कहां कहां रहीम और रसखान के पद पढ़ाए जा रहे हैं, गौर कीजिए कभी। अब तो हमारे जो श्रेष्ठ हिंदी के साहित्यकार हैं उनको भी अध्ययन अध्यापन से किनारे किया जा रहा है। अब जिस समाज को आप जो पढ़ाइएगा उसका विकास होगा, तो आप अपने समाज में आपने समाज की जो श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं, भारतीय समाज को जानना है तो उनको या तो संस्कृत पढ़ना होगा, हिंदी पढ़ना होगा, बंगला पढ़ना होगा, तमिल पढ़ना होगा, तेलुगु पढ़ना होगा। आपकी व्यवस्था में अपनी भारतीय भाषा में जो लिखने वाले रचनाकार रहे, जिन्होंने भारत की श्रेष्ठ साधना को अपने साहित्य का विषय बनाया, वो अपने सिलेबस से ही बाहर कर दिया है।
0: अगर हम साहित्य की तरफ पुनः लौटे, अपने साहित्य को फिर से हम देखें और पुनरावलोकन करें, आत्ममंथन करें, तो समाज में जो नैतिक बुराइयां हैं या नैतिक पतन हो रहा है इसको दूर किया जा सकता है
1: एकदम। दो, नैतिक शिक्षा और साहित्य की शिक्षा। दसम कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अधिक जरूरी है साहित्य की शिक्षा और नैतिक शिक्षा। जब तक साहित्य और नैतिकता की शिक्षा अपने सिलेबस में नहीं आएगा, हम अपने देश को श्रेष्ठ देश नहीं बना सकते, ये मान के चलिए। आज कहीं ना कहीं जो गिरावटें आई हैं उसमें हमारी अध्ययन पद्धति, हमारी शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। आज समाज नैतिकता के बजाय सिर्फ धनार्जन की दिशा में लगा हुआ है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था उसका मूल मंत्र इतना है कि हम PCM पढ़ें, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। एक शब्द में पी में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, सी में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, एम में मैथ पढ़ना चाहते हैं। एकदम नैनो टेक्नोलॉजी चाहिए उनको, छोटा सा। तो ऑब्जेक्टिव अध्ययन और सब्जेक्टिव अध्ययन का फर्क आया है। आज हम जैसा बो रहे हैं वैसा काट रहे हैं। हम समाज में साहित्य और नैतिक शिक्षा का ह्रास कर रहे हैं और इस ह्रास के माध्यम से हम खाली विज्ञान की शिक्षा पढ़ा के कहां तक ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हमारी बौद्धिकता विज्ञान सम्मत हो मगर मेरी हार्दिकता साहित्य सम्मत हो।
0: जब तक ऊंचाइयां,
1: आर्थिक ऊंचाइयां हासिल हो सकती हैं मगर हमारा नैतिक उत्थान संभव नहीं है जब तक हम अपने देश के उन नौनिहाल बच्चों को जो गांव में पढ़ रहे हैं या शहर में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे कदमा स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी मेरे भारत का नागरिक है, सिरसी स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी मेरे भारत का नागरिक है। हमको जब तक दोनों बच्चों का सिलेबस एक करना होगा, समान शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही हम समाज का निर्माण कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है।
0: श्री सुबोध सिंह सिवगी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि हम फिर से उसी बागडोर को पकड़ करके, साहित्य की बागडोर को पकड़ के हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आर्थिक ऊंचाइयों के साथ साथ हमारे देश का नैतिक उत्थान भी होगा। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हमारे भारतीय साहित्य में सामाजिक समरसता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुबोध सिंह शिवगीत से ली गई भेंटवार्ता का पुनर्प्रसारण। भेंटकर्ता थे परमेंद्र कुमार मिश्रा। और इसके साथ ही आज का विविधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम। सबसे पहले कुछ जरूरी संदेश।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत नया आकाशवाणी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

0: बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष

0: की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरज जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।

0: इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है जंग फिर शुरू हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन कतर कुवैत ओमान जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला 10 भारतीय बचाए गए एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन। जनसत्ता सहित कई अखबारों में है 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश। मॉनसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है देव भूमि से रूठे देव। पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता। राज्य के 15% गांव अब निर्जन। पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2-3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
7: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Andash Gupta, Akashvani News, Kolkata.
6: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module system.

0: मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस संबंध में जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। 15 जुलाई को पथ निर्माण विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा होगी। देवघर श्रावणी मेले से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को श्रद्धालुओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
2: श्रावणी मेला तो आप समीक्षा करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उसमें हम एमसी डायरेक्टर को यूं बुलाएंगे। श्रावणी मेला को देखते हुए हमारी तैयारी कोई होनी चाहिए। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हॉस्पिटल कोई राइटिंग अड्डा नहीं है और जिस तरह से कुछ नेताओं

0: एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाज में हिदायत दे रहा हूँ अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहाँ होगा तो मैं ताला मारूंगा। स्वामी मिला तो आप शिक्षक कह गए।
1: गोड्डा शहर के करगिल चौक स्थित आभूषण दुकान में हुई लूट और गोलीबारी की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी मुकेश कुमार ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। वहीं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हम इतना जानते हैं कि हमको अपराध मुक्त कोटा चाहिए और जो भी सामान ले गया और जिस तरह से भय वातावरण फैलाया है पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग उसको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मारे भी जाएंगे और जब मारे जाएंगे निश्चित रूप से भय मुक्त होगा अपराध मुक्त होगा।
1: रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत कल शाम 4 बजे तक लगभग 74% एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 24% फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 96% फॉर्म का वितरण तथा 34% फॉर्म का डिजिटाइजेशन दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी ईआरओ एईआरओ बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स को शत प्रतिशत फॉर्म वितरण संग्रहण तथा समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने और मतदाताओं से शीघ्र फॉर्म जमा करने की अपील की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आज से 19 जुलाई तक इंजीनियरिंग टीआरडी तथा सिग्नल और दूरसंचार विभाग की ओर से संयुक्त रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रेलवे ट्रैक और ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव तथा आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। ब्लॉक के कारण कई मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है जबकि कई ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव और समय परिवर्तन किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आद्रा मंडल के इस रोलिंग ब्लॉक का असर बोकारो पुरुलिया आसनसोल टाटानगर महुदा और आसपास के रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वे नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा हस्ताक्षरित हॉकी स्टिक भेंट की है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस कप में टीम की ऐतिहासिक जीत की स्मृति है। सिमडेगा जिले में पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। कोलेबिरा थाना की पुलिस ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी के लिए रेकी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि बांसजोर क्षेत्र में ताजा गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
3: एक बस से गांजा बरामद किया गया था जिसमें एक पकड़ा गया था और 2 फरार हो गया था जिसे गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है संतोष नायक सोना। ये उड़ीसा के कंधमाल जिला का रहने वाला है। गोवंशीय पशु को पार करने के लिए कार से पुलिस की गतिविधि पता लगाया जा रहा है। 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है।
1: मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताते हुए 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को गरज चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर कृषि कार्य करने की सलाह दी है। उधर गुमला जिले में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। झारखंड राज्य खो खो संघ के तहत राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन रजरप्पा के डीएवी ग्राउंड में किया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मेजबान रामगढ़ और रांची के बीच खेला गया, जिसमें रांची की टीम चैंपियन बनी। मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक ममता देवी ने पुरस्कार वितरण किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से इस खेल को बढ़ावा मिलेगा।
4: रांची की टीम विजेता रही और मैं उन टीमों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सभी बच्चों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जब भी कोई गेम होता है तो उसके 2 पहलू होते हैं, जिसमें कि एक हारता है और एक जीतता है। तो मेरी ओर से जितने भी उप विजेता टीम है, विजेता टीम है, सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।
1: रांची में आयोजित प्रथम झारखंड राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का समापन कल विभिन्न आयु वर्गों और पुरुष एवं महिला वर्ग के फाइनल मुकाबलों तथा पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मध्य पूर्व में युद्ध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। प्रभात खबर ने लिखा है, 15 अगस्त को 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार। झारखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक बढ़ा नामांकन अनुपात, इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग की 4 टीमें एक साथ सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं प्रसारण मीता के साथ।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

और इसके साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए अगला प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से कुछ ही पलों बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। वीर जारा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है संजीव कोहली और मदन मोहन का।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गाना आवाज है अलका याग्निक की, समीर का लिखा हुआ गाना है और संगीत नदीम श्रवण का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में कभी अलविदा ना कहना इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मंजू द्विवेदी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम

0: लिया लिया ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल। धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही ना इंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: मेरा कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म।

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी और

प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाती रही। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976 खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का
2: मैं आऊं विशाल।
1: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान
1: इकबाल मियां, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं।
4: वस्त्र कंधे पर रख लिया।
5: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई? बम किससे हुई?
6: नहीं बताती हूँ।
5: नहीं,
6: दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचाकर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होती।
5: बस बस करो मेम साहब।
1: मेम साहब
5: क्या काम नहीं तेरी मेम साहब है जिससे तू?
1: नहीं
6: मुझे कुछ सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
5: करता।
6: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
5: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
7: तुम?
8: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
9: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया। एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई। एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई। वादा।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जानी मानी अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गई उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है। और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

0: और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
1: जी।
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बज चुके हैं, पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपके साथ कई जानकारी भरी बातें करते हैं। इसके अलावा मौसम संबंधी अपडेट्स, ट्रैफिक और यातायात संबंधी बातें भी आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, जीवन में लोगों की बहुत कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जो आगे चलकर बहुत प्रभावकारी सिद्ध होती हैं और बड़े बदलाव की वाहक बन जाती हैं। बात चाहे स्वास्थ्य की हो, आर्थिक हो, या मन और रिश्तों के लिए हो, कुछ ऐसी बातें या आदतें होती हैं जो बड़े दूरगामी और अच्छे बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो निश्चित रूप से स्वस्थ जीवन व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो कई छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अगर अमल किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम स्वस्थ जीवन गुजारते हैं। इसी क्रम में अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो काफी बड़ा बदलाव दिख सकता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हुए, हम अगर रोज सवेरे 10 मिनट टहलने को जाएं तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव में कमी होती है और अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अलावा रोज सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी का सेवन करने से पाचन ठीक रहता है और व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म भी दुरुस्त होता है। सुबह जल्दी उठना और रात जल्दी सोने का स्वास्थ्य पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रात को सोने से पहले अगर अगले दिन की 3 प्राथमिकताएं तय कर ली जाएं तो इससे दूसरे दिन उन प्राथमिकताओं पर फोकस बना रहता है। जहां तक पठन पाठन की बात है तो अगर हम रोज एक पन्ना पढ़ने की आदत डाल लें तो साल में एक पुस्तक पूर्ण रूप से पढ़ी जा सकती है। कहा जाता है कि 2 मिनट वाला काम तुरंत कर लेने से काम पेंडिंग नहीं होता है। जहां तक आर्थिक मामलों की बात है तो अगर हम रोज कुछ रुपयों की बचत करें तो इसका भी काफी बेहतर

प्रभाव पड़ता है। अगर आप 20 या 50 रुपए तक की बचत ही करते हैं तो महीने के अंत में 1500 रुपए जुड़ जाते हैं। अपने खर्चों में नोटबुक में दर्ज करना चाहिए, इससे पता चलता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। ईएमआई और बिल के अपडेट पर अलर्ट होने से विलंब शुल्क से बचा जा सकता है। कुछ और भी छोटी छोटी आदतें हैं जो जीवन में रिश्तों के बीच मिठास बढ़ाती हैं। किसी कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने से सोच पॉजिटिव होती है। घर वालों से 10 मिनट बिना फोन के बात करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। किसी की गलती पर उसे अगर माफ कर दिया जाए तो दिल हल्का रहता है। और जहां तक अच्छी आदतों की बात है तो शुरुआत छोटी रखें। एक बार में एक ही अच्छी आदत पकड़ें तो, और अगर 21 दिन तक इसे दोहराते रहें तो वो आदत में शुमार हो जाती है। और छोटी छोटी आदतें, अच्छी आदतें बड़े बदलाव की जमीन तैयार करती हैं।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है जिसे कैच द रेन अभियान के नाम से जाना जाता है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को बचाना, इसको लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना, वाटर स्ट्रेस वाले जिलों पर फोकस करना सहित अभियान में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना शामिल है। इसी अभियान के क्रम में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को स्टोर करके भूजल स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। बारिश का हर बूंद कीमती है के तहत लोगों के बीच वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। देश के 141 वाटर स्ट्रेस वाले जिलों में रेन वाटर स्ट्रक्चर स्थापित करने की पहल की जाती है। अभियान को लेकर पंचायत, स्कूल कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है। भारत में भूजल में तेजी से कमी हो रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार लाया जा सकता है। छत का पानी सीधे नाली में न जाकर जमीन में जाता है, जिससे बाढ़ और जल भराव में कमी होती है। सूखे से बचाव होता है, जिससे गर्मियों में पानी की कमी कम होती है, लागत कम होती है और बोरवेल या टैंकर पर निर्भरता घटती है। कृषि और पेयजल सुरक्षा बढ़ती है, जिससे गांवों में साल भर पानी उपलब्ध रहता है। कैच द रेन अभियान के 3 चरण थे। पहले चरण में जो वर्ष 2021 में चला था, उद्देश्य हुआ कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स था। दूसरे चरण में वर्ष 2022 में कैच द रेन विद टेक्नो सागा पर बल दिया गया था, जबकि तीसरे चरण में जो वर्ष 2023-24 में चला था, नदी के किनारे और शहरी क्षेत्रों पर फोकस किया गया था। सभी चरणों के अभियान का स्लोगन नदी का बचाओ, नदी को बचाओ बारिश को पकड़ो था। कैच द रेन अभियान का प्रभाव महानगरों और छोटे शहरों के साथ साथ कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। यही वजह है कि शहरों में कई

सरकारी भवनों और विद्यालयों के रूफ टॉप पर वाटर हार्वेस्टिंग की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। दोस्तों, आवश्यकता इस बात की है कि इस अभियान को शहरों से लेकर गांवों तक इनका विस्तार किया जाए और इसमें जन भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए।

दोस्तों, हेलो हजारीबाग कार्यक्रम के फॉर्मेट के अनुरूप हम सब मौसम से जुड़ी चर्चाएं भी आपसे अक्सर साझा करते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। मॉनसून के तहत बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और जहाँ तक मौसम विभाग की बात है, तो इसको लेकर विविध जानकारियाँ समय रहते आप सबों को उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि बीते एक दो दिनों से बारिश तो नहीं हुई है, मगर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दो तीन दिनों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए इससे जुड़ी जो सावधानियां हैं, निश्चित रूप से उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। बारिश के दौरान अक्सर देखा जाता है कि वज्रपात की घटनाएं भी होती हैं और कई बार इसमें कीमती जानें भी जाती हैं। तो कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें निश्चित रूप से जिन पर अमल किया जाए तो हम इनसे बच सकते हैं, या काफी हद तक इनमें कमी आ सकती है। जाहिर सी बात है कि जब लगातार भारी बारिश हो रही है तो ऐसे में प्रयास करना चाहिए कि हम सब किसी सुरक्षित स्थान पर ही रहें। अक्सर देखा जाता है कि बारिश के समय किसान भाई खेतों में कृषि कार्य करते नजर आते हैं। ऐसा करने में कभी कभी वो वज्रपात की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में प्रयास ये होना चाहिए कि जब बारिश थम जाए तब कृषि संबंधी कार्य में आप जुड़े। इसके अलावा देखा जाता है कि बारिश जब हो रही हो तो लोग किसी पेड़ के नीचे या किसी मैदान में नजर आते हैं, तो इससे बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और जहां तक हो सके किसी भवन या पक्के के मकान में खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अलावा किसी ऊंचे टावर आदि के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन स्थानों में ऊंचे पेड़ों और टावर आदि के पास वज्रपात की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो निश्चित रूप से आप सब इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

दोस्तों, आज 13 जुलाई है और कार्यक्रम में हम आपसे साझा करते हैं आज के दिवस की ऐतिहासिकता। तो हम आपको बता दें कि सन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की भारत में शुरुआत हुई थी। तत्कालीन कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने पहली बार ब्रिटिश सामग्रियों के बहिष्कार का सुझाव दिया था। और दोस्तों, आज ही के दिन 1929 ईस्वी में महान क्रांतिकारी जतींद्रनाथ दास ने लाहौर जेल में कैदियों की बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर अनशन शुरू किया था। ये अनशन 63 दिनों तक चला था और उनकी शहादत के साथ खत्म हुआ था। और दोस्तों, 1998 में लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप जीतकर भारत के लिए पहला ATP खिताब जीता था।

और 13 जुलाई की बात करें तो दुनिया में कई अन्य प्रमुख घटनाएं भी आज के दिवस में घटित हुई। 1645 ईस्वी में आज ही के दिन एलेक्सेई रोमानोव रूस के शासक बने थे। 1803 ईस्वी में आज ही के दिन महान समाजसेवी राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज की शुरुआत की थी। 1923 ईस्वी में आज के दिन लॉस एंजेलिस में हॉलीवुड का साइन बोर्ड लगाया गया था। सन 2000 ईस्वी में आज के दिन फिजी में महेंद्र चौधरी समेत 18 बंधक रिहा हुए थे।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, हम कार्यक्रम के फॉर्मेट के अनुरूप स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां भी आपसे करते हैं साझा। दोस्तों, आज सोमवार है और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अलग अलग विभागों में किन चिकित्सकों की ड्यूटी है, ये जानकारी आपसे करते हैं साझा। तो दोस्तों, आज शिशु रोग विभाग के ओपीडी में आज प्रातः से डॉक्टर क्षितिज आनंद, डॉक्टर हीरालाल, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर अंशु की ड्यूटी है और इसी विभाग में शाम में डॉक्टर नीलम और डॉक्टर नाजिया प्रतिनियुक्त रहेंगी। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि नेत्र विभाग में आज कौन से चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। तो आज सोमवार है और आज पूर्वाह्न 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर उमेश प्रसाद, डॉक्टर राघव, डॉक्टर प्रीति कुमारी ड्यूटी में मौजूद रहेंगी, जबकि अपराह्न 3 बजे से संध्या 6 बजे तक डॉक्टर उमेश प्रसाद, डॉक्टर राघव और प्रीति कुमारी ही आपको सेवा देंगी। जहां तक इमरजेंसी की बात है तो डॉक्टर शिप्रा कुजूर, डॉक्टर परिमल पीयूष, डॉक्टर अर्चना सिन्हा और डॉक्टर मौसमी आनंद रहेंगी। वहीं ओटी में डॉक्टर विवेक कुमार और डॉक्टर शिफा हबीब की ड्यूटी है।

और दोस्तों, ट्रैफिक और यातायात नियमों से जुड़ी जानकारियां भी हम आपसे करते हैं साझा। निश्चित रूप से दोस्तों, आए दिन समाचारों में सड़क दुर्घटनाओं की खबरें देखने सुनने को मिल जाती हैं। निश्चित रूप से अगर हम सभी लोग ट्रैफिक नियमों का भलीभांति पालन करें तो इन पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। दोस्तों, जो भी दोपहिया वाहन चलाते हैं उन्हें जरूर हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और चार पहिया वाहनों के चालकों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो मालवाहक भारी वाहन का परिचालन करते हैं ऐसे चालकों को चाहिए कि निश्चित रूप से वो जो स्पीड सीमा है उसका भलीभांति पालन करें। विशेष रूप से बारिश के मौसम में जब सड़कों पर फिसलन ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में रफ्तार को निर्धारित सीमा के भीतर रखें और

जब कुहासा आदि का प्रकोप दिखे तो अपने वाहनों की रफ्तार काफी कम कर लें या वाहनों को किनारे पार्क कर लें, और भूल कर भी वाहन चालकों को नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि नशे के कारण जो लोग वाहनों का परिचालन करते हैं तो दुर्घटनाओं की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों पर ध्यान सबको देना चाहिए। शहर में जो भी वाहन चालक हैं, अपने वाहन को पार्किंग स्थल में ही, जो निर्धारित स्थल है वहीं अपने वाहनों को पार्क करना चाहिए। जहां तहां वाहन पार्क कर देने से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है और लोगों का कीमती वक्त बर्बाद होता है।

हेलो हजारीबाग। कार्यक्रम के फॉर्मेट के अनुरूप अब हम आपसे साझा करते हैं कुछ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ खेल से जुड़ी जानकारियां। दोस्तों, हजारीबाग के बरही अनुमंडल पुलिस की ओर से एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर के नेतृत्व में बरही चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में विशेष रूप से नशा मुक्ति, डायन बिसाही, महिला सुरक्षा पर लोगों को जागरूक किया गया। इंटरनेट मीडिया का जिम्मेवारी से उपयोग करने को लेकर भी जानकारी दी गई। नुक्कड़ सभा में छात्र छात्राओं के साथ बरही के आम नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अपने संबोधन में एसडीपीओ श्री राधा प्रेम किशोर ने कहा कि अपराध नियंत्रण में पुलिस के साथ साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, महिलाओं का सम्मान करने और किसी भी आपराधिक घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। और दोस्तों, हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में निकलने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा में इस वर्ष विश्व संस्कृति की झलक दिखाई देगी। नाइजीरिया, रूस, इजराइल, यूक्रेन, केनिया समेत कई विदेशी भक्त रथ यात्रा में शामिल होंगे और इसको लेकर चौपारण में तैयारी काफी जोर शोर से हो रही है। और इस रथ यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने वाला बनाने के लिए काफी जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। और झारखंड राज्य से जुड़ी खबर कर रहे हैं आपसे साझा। राज्य की गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को 4 माह बाद फिर से टेक होम राशन के तहत पोषाहार मिलना शुरू हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में अगले माह से राशन वितरण शुरू हो जाएगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एजेंसी का चयन नहीं होने कारण अप्रैल से राज्य में टेक होम राशन का वितरण बंद था। और दोस्तों, जवाहर घाट स्थित वन विश्रामागार में अगरिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कला एवं संस्कृति आधारित कार्यक्रम का रविवार को उत्साहपूर्ण माहौल में समापन हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए चित्रकारों, कला प्रेमियों, विद्यार्थियों और स्थानीय कलाकारों ने चित्रकला के माध्यम से प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, लोक संस्कृति का संदेश दिया। और दोस्तों, हजारीबाग के सरहुल मैदान स्थित धूमकुड़िया भवन में आदिवासी केंद्रीय सरना समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र बेक ने और संचालन सचिव सुनील लकड़ा ने की।
निर्णय लिया गया कि विश्व आदिवासी दिवस इस वर्ष बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए सरहुल मैदान में साफ सफाई, सौंदर्यीकरण एवं पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। और दोस्तों, हजारीबाग तैराकी संघ के तत्वावधान में चौथे जूनियर एवं सब जूनियर जिला तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन रविवार को किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवा तैराकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और दोस्तों, बिहार राज्य से जुड़ी खबरें करते हैं आपसे साझा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। यह विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के MIT परिसर में बनेगा और तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। और दोस्तों, बिहार सरकार अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी जीविका दीदियों को पंचायतों में सुधा बूथ उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सभी 8053 पंचायतों में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन और जीविका के बीच करार होगा। इस पहल से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। इसके लिए महिलाओं को ₹60,000 सरकार उपलब्ध कराएगी। वहीं जीविका दीदियों को ₹15,000 अंशदान कर पूंजी लगानी होगी। और दोस्तों, भारत अब केवल अपने छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए भी उच्च शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार इस शैक्षणिक वर्ष में 173 देशों के 58,134 विदेशी छात्रों ने भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दाखिला लिया। ये संख्या वर्ष 2019-20 की तुलना में करीब 19% अधिक है। विदेशी छात्रों में सबसे अधिक संख्या नेपाल के विद्यार्थियों की रही, जबकि कर्नाटक विदेशी छात्रों का सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। और दोस्तों, देश में पौधारोपण अब केवल मानसून तक सीमित सरकारी अभियान या सामाजिक संगठनों की अलग पहल पर निर्भर नहीं रहेगा। इसे संगठित राष्ट्रीय जन आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पर्यावरण संरक्षण संकल्प और वृक्ष मित्र संवाद कार्यक्रम में वृक्ष मित्र परिवार की घोषणा करते हुए

0: करते हुए पांचों स्वर्ण पदक जीत लिया। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। और अब दोस्तों आज के सुविचार के साथ करते हैं दिन की पॉजिटिव शुरुआत। दोस्तों अपनी छोटी से छोटी आदतों को अगर हम नियमित रूप से जारी रखें तो आने वाले दिनों में एक काफी बड़े बदलाव का वाहक बन सकता है। और अब हेलो हजारीबाग कार्यक्रम से मुझे यानी मासूम को दें इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए अगला प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से।
1: एल्बम का नाम गम बड़े आते हैं।

दुनियादारी। इस फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। विश्वेश्वर शर्मा ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत।

अनुराधा पौड़वाल और तलत अजीज की आवाजों में सुनिए इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत। राजेश रोशन का संगीत है, एल्बम का नाम बहार आने तक।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अशोक खोसला की गाई ये गजल, जिसे लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ने, जगजीत सिंह का संगीत।

एक हमारे दोस्त थे, लंदन में रहे थे, ऐसे बहुत पैसे आ गए उनके पास, जैसे फेंक गए ना अभी, तो वो पंजाब जब वापस गए 15-20 साल के बाद, वहाँ उन्होंने बंगला बनाया और उसकी जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी उन्होंने बुलाया सब दोस्तों को, बोले देखिए हमारा ड्राइंग रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये वो है, सब करके बड़ा अच्छा बंगला था। फिर पीछे लॉन में ले गए तो वहाँ 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, तो एक में गर्म पानी, तो वो समझ आ गई बात सर्दियों में नहाने के लिए, एक में ठंडा पानी तो वो गर्मी में नहाने के लिए, तो एक खाली पड़ा हुआ है। तो उनको पूछा भी ये खाली क्यों पड़ा है स्विमिंग पूल, बोले बात ये कि कभी कभी नहाने को दिल नहीं करता है। कई वैसे पंजाबी में कई ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है, जैसे मैं जगजीत सिंह हूं, ये सुरेंद्र सिंह है, अभी हंसने वाली बात नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी अपने घोड़े पे आ रहे हैं और जगजीत सिंह जी पूछते हैं उनको, सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा घोड़ा कितने है? तो सुरेंद्र सिंह कहता भी घोड़े पे तो मैं बैठा हूं, तुमको दिखता नहीं। कहता फिर भी पूछने की हर जाएगा।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में अभी आपने सुनी ये गजल, राणा अकबर बदी का ये रचना थी।
1: फिर मेरे दिल पे किसी दर्द ने करवट ली है,

बेवफा तू है कभी मैं न कहूँ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़क कर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत। मन्नाडी की आवाज में शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ब्रेक पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, हम जानते हैं आपको इंतजार होता है इस कार्यक्रम का, ताकि आप भी हमसे जुड़ सकें, शामिल हो सकें इस कार्यक्रम में और अपनी टिप्पणियों के जरिए अपने दिल की बातें साझा कर सकें। तो आइए आज की इबारत की ओर आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम एक इबारत पढ़ते हैं और उस इबारत को लेकर उस इबारत में से आपको कुछ शब्द चुनने होते हैं। तो चलिए, जो साथी फेसबुक पर जुड़ चुके हैं वो तो ठीक ही है, वहां पर कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन यदि कोई साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके लिए एक बार हम ये आज की इबारत पढ़ देते हैं और आपको इस इबारत में से शब्दों को चुनना है और बताना है कि आज कौन से गीत और किन शब्दों के गीत हो सकते हैं। आज की इबारत है, जीवन की ज्योति तब तक उजली रहती है जब तक संवेदनाओं की पुकार सुनाई दे। चंदन की तरह शीतल रहकर किसी के साथ की कीमत को समझना ही सागर जैसी गहरी सोच की निशानी है। झूठ क्षण भर का सहारा दे सकता है, लेकिन मन को सच्ची शांति नहीं देता। दिल हमेशा ही गैरों में अपनापन ढूंढता है। कुछ तस्वीरें सिर्फ यादों में जीवित रह जाती हैं, और फिर रूह की वो जलन, काया की हर तपन इंसान को पहले से और अधिक मजबूत बना जाती है। तो इस इबारत को आपने सुन ही लिया है, आपको बताना है कि आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। चलिए पहले गीत की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको एक हमारे साथी ने लिखी हुई बात बताते हैं। एक साथी ने लिखा है, पूरी इबारत को एक भाव में देखा जाए तो इसका संदेश है कि जीवन में सच्चाई, संवेदनशीलता, रिश्तों की अहमियत और संघर्षों से मिली मजबूती ही इंसान को परिपक्व बनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि यही चीजें हैं जो इंसान को और निखरने में और परिपक्व बनने में और मजबूत बनने में सहायक होती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले गीत की ओर। भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज, नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, सुधीर फड़के का संगीत।

जी हाँ, तो आप में से कई साथियों ने बिल्कुल ये गीत सही पहचाना था और ये शब्द था ज्योति। एक साथी ने लिखा है कि सच कहूँ तो सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम की वजह से हमारी बातचीत भी एक प्यारे सफ़र जैसी बन गई है। हर दिन कोई नया शब्द, कोई पुराना गीत, कोई मीठी याद और कुछ दिल से निकली बातें, यही इसकी सबसे सुंदर बात है। हम सब श्रोता मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एक परिवार की तरह से बैठकर अपनी बातें कहते हैं, उससे ही तो इसकी खूबसूरती है। और साथ में जो गीत बजते हैं वो सबसे प्यारा साथ होता है होस्ट का। जी हाँ, जब हम और आप इस तरह साथ होते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपकी टिप्पणियाँ पढ़कर, और लगता है कि हाँ, हमारी बात सुनने वाला भी उतने ही रुचि के साथ हमसे बात कर रहा है। एक साथी ने लिखा है, हमारी इबारत पे से इन्होंने लिखा है, संवेदनाएं शब्दों में नहीं, हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी नहीं टूटता। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देते हैं और संबंधों को गरिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, जब संवेदनाओं की बात हो रही है तो आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी याद को साझा कर सकते हैं जब आपने अपनी संवेदनाओं को पूरे हृदय से महसूस किया हो। और तब तक आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म खामोशी से। हेमंत कुमार के ने इस गीत को गाया है, गुलजार के बोल हैं और हेमंत कुमार का संगीत।

रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और

0: सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर, मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई, सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा कि यह मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श और उनसे प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को शामिल करते हुए तैयार की गई है। मंत्रालय ने 27 जुलाई तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपराध के खिलाफ आम नागरिकों की एकजुटता पर जोर दिया और मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की।
1: कोई घर में काम करने आए तो उनका आधार कार्ड जरूर लो, उनका चेहरा मिलान करो, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाए। और रोजाना जो डकैती, चोरी और जो हत्याओं का दौर जमशेदपुर और सब जगह शुरू हुआ है, इसलिए नागरिक सुरक्षा समिति का गठन और कौन बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसके पूरे मूवमेंट पर नजर रखें, ताकि अपने लोगों की हम सुरक्षा कर सकें।
0: रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के मजदूरों की सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। याचिका में प्रभावित मजदूरों के सुरक्षित घर वापसी, आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग की गई थी। धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद की ओर से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, आरोप वापस लेने, सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने और 2 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में कल देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान का विरोध कर रहे असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और 2 बम भी फेंके। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेले में इस वर्ष 50 लाख से ज्यादा भक्तों के बासुकीनाथ पहुंचने का अनुमान है। मंदिर प्रशासनिक समिति के सचिव और दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने संबंधित अधिकारियों और धर्म रक्षणी सभा के सदस्यों के साथ बैठक की। अनुमंडल पदाधिकारी ने तैयारियों की जानकारी दी।
2: पंडा धर्मेश सभा सदस्यों के साथ एक मंदिर में बैठक की गई है, जिसमें सावनी और भादो मास में मंदिर खुलने का समय, जलार्पण स्टार्ट करने का समय, अर्घा लगाने का जो गाइडलाइन है और जो एसओपी बनाया गया है कि अर्घा कब लगाया जाएगा, उसके संबंध में निर्णय लिया गया है। और कांचा जल चढ़ाने वाले लोग हैं उनका भी संख्या लिमिट किया गया है। और जितने भी पंडा समाज के लोग हैं, जो धर्मेश सभा के द्वारा जो लिस्ट बनाया जाएगा, जिनको आई कार्ड दिया जाएगा, उसकी सूची को इनको प्रायर अप्रूवल करा लेना है।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कतरास के करकट्टा जंगल में कल सीआईएसएफ ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाकर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया और कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की। कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में करीब 70 सीआईएसएफ जवानों, सीसीएल प्रबंधन और मैकलसीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने पिपरवार क्षेत्र में गोपनीय सूचना के आधार पर जंगल के भीतर चल रहे अवैध खनन और तस्करी के अड्डे को ध्वस्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गए। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। जामताड़ा जिला योग संघ की पहल पर डीएवी विद्यालय परिसर में अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला योग संघ के सचिव दीपक दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी चाईबासा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
4: इंटर स्कूल योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जामताड़ा के 15 स्कूलों से लगभग 250 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को हम लोग प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रहे हैं और ये जामताड़ा जिला योग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। आने वाले समय में जो बेहतर खिलाड़ी होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चाईबासा में जामताड़ा जिला को प्रतिनिधित्व करेंगे।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बिंदाले, नई दिल्ली के रुषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक किए पूरे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों की गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है, यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं, यही सच्चाई है। ये भी एक साथी ने लिखा है और जरूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये लिखते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारेआम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो, इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत। इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूँ, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है, तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो, साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था, उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती है। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना, उसका शब्द था मन। और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

0: फुर्सत के।
1: किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये सुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फोक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहां हम दिल खोल कर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराजगी हो, कुछ हो, तो हम यहाँ पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफर अब संपन्न करने की दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में बातें दुनिया की। कहने को तो मात्र तीन अक्षरों का शब्द है दुनिया। छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने भीतर अनंत आकाश, अगाध महासागर। ये शब्द दुनिया जहां दार्शनिकों के लिए एक पहेली है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सी प्रयोगशाला है, और कवियों के लिए उनके लिए भावनाओं का एक बहता हुआ दरिया। हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये दुनिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है इसका बदलाव। आज जो शिखर पर है, कल एक शून्य हो सकता है। इंसान पूरी जिंदगी चीजें बटोरने

0: तो क्या है?
1: दुनिया केवल मिट्टी और पानी का गोला नहीं है दोस्तों, ये रिश्तों का एक घना जंगल है। यहाँ पर प्यार है, तकरार है, वफादारी है तो धोखा भी है। हर इंसान इस बड़ी सी दुनिया में अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया बनाता है, जिसमें उसका परिवार, दोस्त और सपने शामिल होते हैं। आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया शब्द का अर्थ बदल गया है। अब हम डिजिटल दुनिया के वासी हो गए हैं, जहां हजारों फ्रेंड्स तो हैं, फिर भी इंसान अकेला महसूस करता है। संघर्ष इस बात का है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आंतरिक दुनिया यानी हमारा इनर वर्ल्ड उसको भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी तमाम दुखों और संघर्षों के बावजूद ये दुनिया खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है।

और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो।

0: भाई
1: क्या है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
0: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
1: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है। ये भाई जरा

0: आज की दुनिया बिखरी सी है, सीमाओं में, विचारधाराओं में, लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया एक परिवार नजर आती है। विज्ञान ने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन दिलों की दूरी मिटाना अभी बाकी है। दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है प्रेम। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा दुनिया को कौतूहल और मासूमियत से देखता है, जबकि एक वृद्ध इंसान उसे अनुभवों को पोटली मानकर देखता है, यानी कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। दुनिया की विशालता और उसमें मनुष्य की छोटी सी हस्ती को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हम सबको इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी सुंदर, हरा भरा और सुरक्षित छोड़कर जाना है।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: क्या हुआ।
1: आज की त्रिवेणी में बातों का सिलसिला बस इतना ही। दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
4: जी।
3: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया। तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरि श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरि को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
3: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का

0: शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
1: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के

0: अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। DN मधोक ने इस गीत को रचा है। सी रामचंद्र का संगीत।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 2:55 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में जारी है। बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नए कोर्सेज को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ विभाग के सचिव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताजा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या 2014-15 की तुलना में 31.5% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से एक मरीज के इलाज के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट रोड हुंडरू निवासी दीपक कुमार साहू को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए प्रदान की गई है। इस मानवीय सहायता के लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मरीज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जामताड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज सदर अस्पताल में दिव्यांग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की जांच कर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि स्वावलंबन पोर्टल पर पंजीकृत 60 से अधिक दिव्यांगों की जांच कमेटी द्वारा की जा रही है, जिसके बाद प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से सीधे उनके घर भेजे जाएंगे।
1: दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया है कि एक स्वावलंबन पोर्टल है जिसमें प्रमाण पत्र चाहने वाले अपनी सारी डाटा को उसमें एंट्री करते हैं। दिव्यांग कैंप में बुलाकर उनका दिव्यांग प्रतिशत जांच करके प्रक्रिया अनुसार उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके घर तक पहुँचा दिया जाता है।
0: इस पहल से जिले के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए दर्जनों जरूरतमंद परिवारों को सीधे लाभ पहुंचा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान जेल आईजी सुदर्शन मंडल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें हृदय संबंधी समस्या के बाद आईसीयू में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड के पहाड़ी गांव लाखाई टी में पारंपरिक हर्बल चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। आईआईटी मुंबई के पूर्व प्रोफेसर एवं वरिष्ठ चिकित्सा शोधकर्ता डॉ. देवतोष दत्ता ने गांव पहुंचकर स्थानीय आदिवासी औषधीय परंपराओं और जड़ी बूटियों का अध्ययन किया। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक शोध से जोड़कर नई चिकित्सा संभावनाओं की तलाश करना है। देवघर एयरपोर्ट ने हवाई संचालन के सफल 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 12 जुलाई 2022 को शुरू हुई इस सेवा से अब तक 10,27,000 से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। निदेशक जय बैनर्जी के अनुसार वर्तमान में दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु के लिए उड़ानें जारी हैं। आगामी अगस्त से गुवाहाटी के लिए भी नई सेवा शुरू होगी। भारत की जूनियर हैंडबॉल टीम चीन के चुझोउ में 15 से 26 जुलाई तक होने वाली 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जमशेदपुर से रवाना हो गई है। यह टीम चीन के लिए रवाना होने से पहले जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई थी। खेल पदाधिकारियों ने टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
2: 19 द जूनियर एशियन चैंपियनशिप चाइना जुचाओ में ये चैंपियनशिप 15 से 26 जुलाई आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता से वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई भी मैच और इस प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए यहाँ टाटा स्टील प्लांट में जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप लगा था।
0: खेल विशेषज्ञों को उम्मीद है कि टीम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस की नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
0: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
0: मैं नहीं, हमारे श्रोता जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
1: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता गोभी,
1: तो पत्ता गोभी के भी थे,
0: लौकी का पराठा भी बनता है,
1: कभी होता है
0: प्याज का पराठा
1: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
0: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का, तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम।
1: चलिए

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
3: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
2: रामदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
4: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
2: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
3: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
1: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
3: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहां कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारे उसूल परवरी धरी रह जाएगी और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी, शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी और जू ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
2: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
4: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
2: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए। बोली,
3: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ अभी नहीं
4: बहन, क्या रात भर भी न ठहरोगी?
3: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
4: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी? मैं कार भेज दूंगी। कार
3: अब खुद कहला दूंगी। हाँ
4: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक शहर में रहते हैं फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
3: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं मगर मौका ही न मिला।
2: इतने में राम दुलारी के शोहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
3: कैसे हो गुरु सेवक? आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
2: गुरु सेवक हंसकर बोला,
5: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत। कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
3: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
5: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रही है।
3: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूँ।
4: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
2: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया मगर वो न मानी।
3: नहीं नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
2: आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई, रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
5: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है, 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
3: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
5: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खो के पैसे मिले तो क्या?
3: सही कह रहा,
5: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूँ, और आंखें किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में।

0: है, मालिक तो कोई है नहीं। हां, उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालने लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
1: अच्छा,
0: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 ही महीने में 250 कर दिया।
1: अच्छा,
0: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
1: अच्छा, एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
0: हाँ भाई, मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
1: अच्छा।
2: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही ना हुए।
1: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
2: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महराजन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
2: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ ना आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
1: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
2: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
3: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
1: तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं

0: मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं, तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
1: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपने दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
1: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं? वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मालूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारीख कुछ दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझा कर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, रामदुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहने आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
4: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहने कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हैं हम एक गीत।
5: सुनते हैं ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था। और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है, क्या कहेंगी दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना।
0: अब जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही

0: ही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह हैं, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी, अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ न सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं
1: सोच
0: सही तरीके से
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं, फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठापटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे। सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत

0: चुका, बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
0: जैसे कि
1: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र चू। और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है।
0: हाँ,
1: तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है, और किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए।
0: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो
0: पोंछ
1: देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं, कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
0: बिल्कुल सही कहा। और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें खासतौर पर बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अब हम क्या कर सकते हैं,
1: गाना सुनवा सकते हैं। तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए परवचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में
1: और तो... जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती है, मदद करती है जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखाकर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है

0: हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए या नीम की सूखी पत्तियां भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
1: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
0: खाना खाते हैं।
1: तो आज किस खाने की बातें करने वाले?
0: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
1: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है
0: जी। ये अलग तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन, ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दू किस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
0: जी।
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर लें, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है। तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है, पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश के व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बताए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सुन रहे थे आकाशवाणी की रांची के समय 4 बजने को है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निपटारे पर संतोष जताया। गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के 2 बीएलओ की सेवा समाप्त कर दी गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दावोस और दिल्ली यात्रा के एमओयू केवल पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बगैर परमाणु बिजली घर समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई। देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक में कर्रो, सारठ और पालोजोरी में नवजात शिशुओं के लिए केयर यूनिट तथा बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा और एआई प्रशिक्षण सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने एआईआर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए चुनाव पाठशाला और बीएलओ की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया में आज वीर शहीद रतिलाल महतो का 27वां शहादत दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऊपरबेड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में झामुमो नेता कालीदीप सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्य में आगामी कई दिनों तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान

0: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी,
0: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
0: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
0: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
0: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है, और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
1: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहां तक मिथ है, कहां तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है।
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इन्फॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन होना महत्व का है
1: हाँ।
0: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है
1: बिल्कुल।
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है, और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है
1: बिल्कुल। तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं।
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी जी।
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी,
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स

0: खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ये ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज,
1: yes.
0: जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है।
1: जी जी जी।
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं
1: जी।
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है?
0: राइट। सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को।
1: जी जी।
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी।
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
1: जी।
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
1: जी।
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स, या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं, और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके।
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं
1: जी जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहां पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर। इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ। क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना
0: जी,
1: या
0: जी।
1: तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाइर रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।

0: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई, तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी।
0: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है, जिसे हम यूरोडायनेमिक्स कहते हैं।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
1: जी जी।
0: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनेमिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
1: जी।
0: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
1: जी।
0: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके, ये कोशिश रहती है।
1: जी।
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
1: जी, जी।
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।
1: जी, जी।
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
1: जी।
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी उसका प्रचार हो रहा है।
1: जी जी।
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है, अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए? क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है।
1: जी, जी।
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है। पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
1: वाह, क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज।
0: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
1: जी। सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का

0: चीजें अभी थियरी है, सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है वो किसी को पता नहीं है।
1: जी जी।
0: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
1: जी।
0: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है
1: जी।
0: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है
1: जी। लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
0: जरूर
1: है।
0: तो जरूर
1: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
0: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है
1: जी।
0: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स है, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
1: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
0: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए
1: जी जी।
0: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है, जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा।
0: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
1: जी।
0: सो हर पुरुष को मैंने बताया ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
1: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं?
0: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं
1: जी हाँ।
0: कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश से

0: पानी की बूंदें नहीं होती। ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
0: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
0: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
0: जी, इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
0: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी,
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
0: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
0: श्रोताओ, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी, अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।

0: हमारे आगे का चुनाव चल रहा है, हमारे घर के सारे सामान बह रहे
1: हैं, हो गई है
2: क्या? हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
1: सारी फसल बह गई।
3: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
4: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
1: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
4: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
3: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी, लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है, नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
5: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा काट।
6: अरे मैंने आज मैं पेड़ काट डाले।
3: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
7: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहो।
3: तो साथियों ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
5: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, सस्ते क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
8: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
1: और पैसे कमाने हैं।
3: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
8: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
4: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
9: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
3: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
0: अरे अरे हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
10: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
10: फसल बह गई।
0: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
10: सारे सामान जल्दी से ले जाना होगा। चलो जल्दी ऊपर,
0: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
10: चलो चलो,
0: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
10: ध्यान से संभल कर।
3: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
11: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
12: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
5: कोई
1: घबराने वाली बात नहीं है री। वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
5: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी फटा हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पल फाड़ गए।
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांत भी तोड़ लेंगे।
5: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
6: हाँ,

0: ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो
3: की पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
1: राम,
3: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
3: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना। हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चाची,
4: क्या बात है?
2: जल्दी बाहर।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हम
5: रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
1: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
5: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
6: चिब्बू भाग ले यहां से,
7: भाग ले के बाद में मारने काटेंगे।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
8: वाह भाई, ये गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे भाई गौरा, बहुत कमाल कर दिया, मिट्टी जीतती
5: है। तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
9: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को
9: कुसुमलता,
10: जगबंधु,
9: चेतना
10: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार, नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित

0: उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में 23 जुलाई को होने वाले सेवादल के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची कांग्रेस भवन में बैठक हुई। मुख्य संगठन नवीन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बताया गया कि सम्मेलन में झारखंड से हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आईटीडीए योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुंदाक नदी पुल निर्माण की धीमी प्रगति पर संवेदक के खिलाफ 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। हजारीबाग में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल परिसर से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत रवाना किया गया जागरूकता सारथी रथ अगले एक महीने तक जिले के गांवों में भ्रमण कर लोगों को परिवार नियोजन के लाभ और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करेगा। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर।

0: दर्शन सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। कार्यक्रम का अगला भजन आपको सुनवाने से पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: जरूरी संदेश के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला भजन।

अशोक अशोक खोसला, घनश्याम वासवानी और शेखर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं कुछ भजन। आइए कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में।

और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक खोसला, घनश्याम और शेखर की आवाजों में कार्यक्रम का ये आखिरी भजन।

और अब इसी के साथ ही यही कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी श्रोता सभी के मीनाक्षी बहन के दने से जोहार प्रणाम राम राम और बतावा तोरिन के हाल चाल कैसन है। और हमारा उम्मीद है कि तोरिन के हाल चाल भी बेसे होते और बढ़िया तरी से अपन अपन खेती बाड़ी के काम दाम में जुटले होते। और अभी देखा कि सांझ के बेरा में अपन अपन रेडियो खोल करके अपन कार्यक्रम सुने थोथिन। और अभी और हम इन जब भी आवो हिए ढेरे मनी जानकारी लेके आवो हिए और कैगो विषय पर बातचीत भी करो हिए। मगर देखा कि अभी हमन आपन बातचीत में आगे भी बढ़वे, पहले सुनो हिए ये जरूरी संदेश।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

तो जरूरी संदेश तो हो गलो, अब जानकारी के तने भी बढ़े के चाहिए। और देखा हम इन करके किसान भाई सभी बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी के काम धाम करो हथिन, और मगर जितना मुनाफा मिले के चाहिए उतना न मिलो है। यह लेल हम इनके किसान भाई सभी के चाहिए कि खेती ऐसन तरी से करल जाए जेकर से किसान सब इनके दुगुना लाभ मिल सके। ऐसने में एगो और तरीका है देखा कि समेकित खेती करके हम इन बेसी से बेसी लाभ ले सको है, अपन आय के दुगुना कर सको है। एकर में है कि हम इन अपन आय के जे दुगुना कर सको है, एकर लिए जरूरी हो है कि हम इन समेकित खेती में ऐसा तरीका है एकर में है कि हम इन कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सकी है। तो देखा कि समेकित खेती देखा कि ऐसा एगो तरीका हो है जेकर में है कि फसल के उत्पादन के साथे साथे पशुपालन हो लो, मछली पालन हो लो, मुर्गी पालन हो लो, बागवानी हो गलो और मधुमक्खी पालन जैसन व्यवसाय हम इन एक साथे कर सको ही है। और अब तो इन जानल चाहवा कि कैसे हम इन अपन फसल के उत्पादन एक साथ कर सको ही है एक व्यवसाय के साथे साथे। तो इस सब से भी जे भी हम इनके व्यवसाय के जरिए जे भी अपशिष्ट पदार्थ हम इनके पदार्थ मिलते हैं वो हम इनके खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सको ही है। जैसे कि पशुपालन हो गलो, ओकर में है कि हम इनके पशुपालन से गोबर मिलो है, गौमूत्र मिलो है, ये हम इनकर फसल के खातिर बड़ी जरूरी हुआ है। और एकर से जे हो का है कि हम इनके बाहरी उर्वरक पे जो खर्च हुआ है वो कम हुआ है। और रहल मुर्गी पालन के बाद तो देखा कि मुर्गी के पीठ जो हुआ है वो हम इनके खेत के माटी के खातिर जे जरूरी पोषक तत्व हो है ओकर खातिर जरूरी हुआ है। और साथे साथे देखा कि मुर्गी पालन करे से कई को लाभ भी हुआ है, जैसे शादी ब्याह हो लो, पार्टी हो लो, या इस सफेद समय में जे भी एकर मांग पढ़ देखबा कि तू बढ़ जाए जेकर से हम इनके किसान भाई सब इनके बेसी लाभ ले सको हथिन। और देखा एकर अलावे है कि तो हो गलो कि मांस हम देखा कि बकरी पालन हो गलो वो भी देखा मांस उत्पादन खातिर करल जा सको है। और देखा कि एकर अलावे देखा कि जे निचला खेत हो है या मध्यम वर्ग खेत हो है ओकर में तालाब बनाए करके भी हमें मछली पालन और बतख पालन कर सको ही है। और एकर अलावे देखा कि तालाब कर जे मेड़ हो है ओकर पर हमें नींबू, अमरूद और पपीता के भी पेड़ लगा सको ही है, जेकर से भी हमें काफी लाभ ले सको ही है और मुनाफा कमा सकी है। और देखा जहाँ पारंपरिक खेती में देखा कि खाली फसल काटे से पर भी देखा आमदनी हो है वहीं एकर से में डेयरी हो गलो, मुर्गी पालन हो गलो और मछली पालन कर से रोजाना देखा कि हम इनके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिल सको है। इसलिए हम इन कह सको ही है कि खेती आधुनिक और वैज्ञानिक खेती हुआ है जेकर में है कि मुख्य फसल के साथे साथे इस सभी प्रकार के व्यवसाय अपनाए के हम इन पूरा लाभ ले सको ही है। एक तरह से कहल जा सको है कि ये सभी एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर हथिन। एकर से जे हम इनके कचरा प्राप्त हुए वो हम इनके संसाधन भी बनो है। हम इन आगो भी अपन बातचीत में बनल रहे सुनो ही है ये लोकगीत।

0: तो देखा अभी हम इन सुने थलिए गीत और हमरा उम्मीद है कि गीत सभी गोटे के जरूर बेस लगले होते। और एकर पहले हम इन बतिया थलिए कि कर कि हम इन समेकित खेती अपनाए के जाते से ज़्यादा हम इन लाभ ले सको ही है। एकर में है कि देखा कि छोट के छोट किसान जो हुए है जिनकर पास जमीन कम हुए है और ओकर में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सको हथिन, मुनाफा कमा सको हथिन। और देखा कि और कई गो कारण से हम इन फसल के हम इनके फसल के नुकसान भी हो जाए है। तो पशुपालन करके बागवानी करके हम इन अपन आय के बना के हम इनकर आय बनल रह सको है। और देखा कि जैविक खाद के इस्तेमाल करे से हम इनके माटी के उर्वरता भी बनल रहो है। ओकर में जो पानी नमी धारण करे के क्षमता हुए है वो भी बरकरार रहो है। और जो पोषण मिले के चाहिए हम इनके माटी के जरिए फसल के वो भी पूरा हुए है। और साथ में देखा कि जा कम रासायनिक खाद के इस्तेमाल हुए से देखा कि हम इनके माटी भी प्रदूषित ना हुए हैं, वातावरण भी प्रदूषित ना हुए, नदी तालाब पोखर जे भी हुए हैं ओहो ओकरों में भी होवे वाला प्रदूषण से भी बचावल जा सके है। और जे फसल के अवशेष हो है ओकर उपयोग कर देखा कि हम इन पशु सब इनके चारा के रूप में कर सको ही है। जेकर चार से देखा कि चारा के लागत भी कम हुआ है और पशु सब इनके भी मिले वाला गोबर के उपयोग भी हम इन अपन खाद के रूप में कर सको ही है। जेकर से है कि हम इनकर फसल के उत्पादन बढ़ो भी है और इस सभी लाभ के देखते हुए हम इनके चाही कि समय कित के तने आपन देखे कि कदम बढ़ावे के चाही। और आगे भी हम इन अपन जानकारी भरल बातचीत में बनल रह पे जे जानकारी हम इन लेके आएले ही वो पहले सुनल जाए। और ये जानकारी देत हथिन जितेंद्र महतो, वो कैसे अपन अनुभव बतैथिन कि कैसे वो अपन खेती बाड़ी करो हथिन, मूँगफली के खेती करो हथिन, भिंडी के खेती करो हथिन, मूली के खेती करो हथिन, तो कैसे वो करो हथिन वो अपन अनुभव बतावत हथिन, तो सुनल जाए।
1: श्रोताओं, आज हमारे बीच है एक सफल किसान जो काफी अच्छे बेहतर तरीके से खेती बाड़ी के कामों को कर रहे हैं। तो आपका नाम?
2: मेरा नाम जितेंद्र महतो है।
1: जितेंद्र महतो कहाँ के रहने वाले हैं?
2: गांव आमनारी के।
1: आमनारी के,
2: जिला हजारीबाग, सदर ब्लॉक।
1: आप कब से खेती बाड़ी के कामों को कर रहे हैं?
2: हम करीब करीब 20 साल से कर रहे हैं।
1: 20 साल से कर रहे हैं।
2: हमारे तो अपना जमीन है नहीं, लेकिन हम साझेदारी करते हैं।
1: अच्छा, साझा में खेती करते हैं, मतलब किसी और का जमीन लीज पे लेकर के करते हैं खेत, है ना? तो अभी आप खेते हुए उसमें क्या लगाए हुए?
2: अभी मक्का लगा हुआ है, भिंडी लगा हुआ है, बोदी है, और बिचार उसको खीरा रोपने का मैंने उसका बनाए हैं।
1: अच्छा, खीरा भी लगाने का।
2: लेकिन पानी पड़ गया है तो उसके लिए अभी नहीं लगा।
1: और बरसाती फसल भी लगाने का तैयारी है?
2: बरसाती फसल के लिए अभी तो अब जब तक समय हम लोग देख रहे हैं तब फिर ऐसे पानी गिर के खत्म हो गया, फिर हमको मिट्टी तैयार करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा।
1: तो आप जो भिंडी लगाए हैं वो किस प्रकार लगाए हैं, क्या तैयारी की है, मिट्टी की तैयारी कैसे की है, क्या
2: उसको पहले 3-4 बार उसको जोताई किए, मिट्टी को एकदम बना दिए धूल, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने गोबर दिए, गोबर उसमें छीटे, उसके बाद पांच बना करके भिंडी का दाना उसमें रोपते
1: गए।
2: अब जब
1: तो ये जो दूरी है वो भिंडी का कितना रहेगा?
2: दूरी है आपको कम से कम 1.5 फीट का, 1.5 बाय 1.5 फीट का दूरी है, तोड़ने के समय में दिक्कत ना हो और बाकी जो बीमारी जो लगती है।
1: तो ये आप जब भिंडी के तो फिर चालते भी होंगे?
2: हाँ, जब 4 इंची का 3 इंची के लगभग होता है तो एक पहला कोड़न देते हैं,
1: मतलब 3 से 4-5 पत्ता हो जाता है तो
2: हाँ पहला
1: कोड़न देते हैं।
2: हाँ, तो उसके बाद फिर 7-8 इंची 9 इंची तक होता है, उसको दोबारा फिर कोड़ते हैं, उसके बाद खाद दे करके उसको मिट्टी चढ़ा देते हैं।
1: तो फिर ये कितने दिनों में भिंडी निकलना शुरू हो जाता है आपका?
2: आपको कम से कम ये शुरू तो नीचे से होना शुरू हो जाता है, कम रखते हैं कि
1: 1.5-2 पित्ता होते होते तो भिंडी फलना शुरू हो जाता है, स्टार्ट शुरुआत हो जाती है उसकी, तो उसको फिर तोड़ाई शुरू कर देते हैं। पहला तोड़ाई शुरू हो जाती है तो इसमें रोग भी तो लगता है?
2: रोग भी लगता है।
1: उससे बचाव के लिए क्या करते हैं, क्या दवाई?
2: बहुत रासायनिक दवाई आता है, और दवाई के मामले में तो हमारे ये पत्नी है तो यही दवाई वो छींटती है, तो मेहनत करते हैं खेती में,
1: तो ये आप जैसे किए तो भिंडी का किए तो तोड़ाई करने लग जाते हैं, उसको रोग लगता है तो आप उससे बचाव के लिए उसको दवा जाके दुकान में बोलते हैं,
2: दुकान में बोलते हैं कि ये बीमारी लग,
1: विशेषज्ञ से भी सलाह लेते हैं।
2: हाँ, मान लीजिए किसी किसी पत्ता सूखने लगता है तो हम लोग दुकान में जाते हैं, भैया ऐसे ऐसे बात है हमको इस तरह का दवा दीजिए, तो वो देते हैं, तो उसको मात्रा भी पूछते हैं कि कितना छिड़काव करना है, तो वो बता देते हैं, तो उसी के अनुसार से बोले 5 लीटर में 10 ml देना है या 5 ml बताता है, उसी अनुसार से मशीन में घोल के हम लोग फिर उसको छिड़काव करें।
1: और इसके साथ साथ में जो आप बोल रहे थे कि मूली भी लगाए,
2: मूली भी,
1: तो क्या मूली भी भिंडी के साथ ही लगा देते
2: हैं? मूली अलग,
1: मूली अलग से लगाते हैं, उसके लिए भी अलग से पात बना कर,
2: उसके लिए भी अलग से पात,
1: तो उसके लिए भी क्या तैयारी करते होंगे?
2: उसके लिए भी पहले से जोताई 3-4 बार उसको जोताई करते हैं, उसके बाद गोबर छींटते हैं, उसके बाद है सो उसको पात बनाते हैं।
1: वो तो इसकी दूरी तो कम ही रहती
2: है,
1: दो इंची मतलब उसमें छेद करके डालते हैं पात में या फिर
2: नहीं, पात बना करके उसमें छेद करता है, कोई कोई लकड़ी ले लेता है, कोई उंगली से ही छेद करके दाना को डालते जाता है, एक एक दाना, उसके बाद है सो कोई ऊपर ही से मैंने उंगली ऐसा चीर देता है, कोई ऐसे इस तरह मिट्टी दे देता है।
1: अच्छा, कोई अगर लाइन वो उस पात में लाइन बना दे, लकड़ी से भी लाइन बना दे और उसमें दाना डाल करके फिर उसको मिट्टी से ढक भी देते हैं, तो मतलब कई तरीके
2: से लगा से रोकने का विधि है।
1: तो उस तरह से लगा देते हैं। तो ये मूली आपकी कितने दिनों में तैयार हो जाती
2: है? हमको वही 32-33 दिन में तैयार हो जाता
1: है। तो तैयार हो जाता है तो फिर उसको फिर बाजार में आप
2: बाजार जाते हैं हजारीबाग,
1: तो खुद से ही बेचते हैं या फिर व्यापारी को?
2: नहीं, हम लोग तो व्यापारी को देते हैं क्योंकि हम लोग को वहाँ जगह है नहीं,
1: तो व्यापारी को,
2: तो व्यापारी आता है, व्यापारी थोक में उठा के चल देता है, तो हम लोग को इसीलिए बाजार का सुविधा हम लोग को नहीं है। तो अभी जो भैया बोले दुकान में बचते हैं तो वो भगा देता है, 8 बजे का नहीं बस भगाना शुरू कर।
1: अच्छा, तो वो तो अलग बात है, लेकिन व्यापारी आता है तो आपके ले जाता है।
2: हाँ,
1: है ना, तो ये तो मूली की बात हुई। और अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या मूंगफली लगाने की तैयारी है?
2: मूंगफली
1: लगाए हैं।
2: हाँ, लेकिन बारिश हो गई तो उसको मिट्टी चढ़ाना
1: बाकी
2: लेट है। मैंने
1: मतलब कैसे क्या किए, क्या तैयारी किए, कैसे इसको लगाए?
2: हल चला करके और दोहड़ा कर दिए, उसको डोहड़ा चला दिए, उसके बाद फिर हल चला करके पीछे से दाना गिराते गया, खाद गिराते गया, उसके बाद फिर जब सब पूरा हो गया वो डोहड़ा ऊपर से चला दिया।
1: मतलब पाटा चलाना बोलते हैं जिसको,
2: पाटा है।
1: तो उसको फिर मतलब जोत करके उसको बीजा छींट दिए और उसके बाद डालते गए और उसके बाद पाटा चला करके उसको प्लेन कर दिए।
2: उसके बाद छोड़ दिए।
1: फिर इसका जनरेशन कितने दिनों में हो जाता है?
2: जनरेशन इसका 20-21 दिन के अंदर, आजकल तो हाइब्रिड वाला दाना आता है, वो देहाती दान रहता है तो 8-10 दिन में निकल जाता है।
1: तो मतलब जैसे बीजा रोपे आप तो पटाते कितने दिनों में है?
2: पटाए अगर पानी नहीं आया,
1: ऊपरी तो, पानी नहीं आया,
2: हाँ, नहीं आया तो 3-4 दिन में उसको पटवन कर देना।
1: मतलब तब तक बीजा जो मिट्टी में नमी रहती है क्या? तो
2: हाँ, मिट्टी में नमी रहती है, हम लोग जैसे देखते हैं कि नमी है, चले 3-4 दिन ये सहेगा। अगर मिट्टी पूरा सूखा हुआ है तो 2 दिन में हम लोग पटवन कर देते
1: हैं। अच्छा, 2 दिन में कर देते हैं। नमी रही तो 4 दिन,
2: नमी रही तो 4 दिन।
1: अच्छा, तो इसका जनरेशन आप बोले कि 1 सप्ताह में हो जाता है?
2: हाँ,
1: 1 सप्ताह में हो जाता है। तो फिर ये कितना ऊंचा, इसकी ऊंचाई होती है जो चालने की आवश्यकता पड़ती है?
2: ऊंचाई तो मिट्टी पर है, किसी किसी का 1.5 फीट भी हाइट हो जाता है, किसी किसी का 1 फीट भी हाइट रहता है। तो मिट्टी चढ़ाने के बाद वो गिरता नहीं है, जो गिर जाता है तो कमजोर हो जाता है,
1: तो इसको फिर चाल देते हैं।
2: हाँ, फोड़ते हैं।
1: फिर भी कितना पत्ता हो जाता है तो फिर आप लोग उसको चालते हैं?
2: कम से कम 5-6 इंची का हो जाता है उस समय, तभी हम लोग उसको कोड़ा निकाय करते हैं और मिट्टी ऊपर देते हैं।
1: तो हवा लगने के लिए भी छोड़ते हैं क्या चाल कर?
2: हाँ, 1 दिन छोड़ देते हैं मौसम के अनुसार।
1: हाँ, जैसा मौसम है, अगर धूप लगा तो हवा, तो फिर उसके बाद मिट्टी चढ़ा देते हैं। सल्फेट वगैरह देते हैं उसके साथ साथ, या केचुआ खाद भी इस्तेमाल करते हैं?
2: दोनों देते हैं। रोपने के समय में केचुआ खाद देते हैं और मिट्टी चढ़ाने के बाद में यह यूरिया देते हैं।
1: अच्छा, तो उसके बाद फिर आपका कितने समय में वो मूंगफली तैयार हो जाता है?
2: हम लगते हैं कि 90 दिन लग जाता है समय।
1: अच्छा, वो तैयार हो जाता है 90 दिन।

0: में तैयार हो जाता है तो फिर उसको घर में रखते हैं या घर से ही जाके बेचते हैं या फिर व्यापारी को ही सीधे बेचते हैं?
1: अगर हमको खाने से बेसी हो गया तो हम बाजार ले जाते हैं, तो बाजार ले जाते हैं तो उसी व्यापारी को फिर बेच देते हैं।
0: तो मूंगफली लगाने से आपको काफी मुनाफा भी होता है?
1: हाँ होता
0: है। तो मूंगफली में क्या रोग भी लगता है?
1: रोग भी लगता है उसमें भी।
0: उसमें भी रोग? हाँ
1: उसमें भी रोग लगता है।
0: किस तरह का रोग?
1: उसमें रोग लगता है, उसका जड़ नीचे से भी सूख जाता है तो पूरा पेड़ मर जाता है। कहीं कहीं ये आपको आधा डाल से भी लग जाता है रोग, आधा डाल ही सूखती है। तो हम लोग वही बीज दुकान में जाकर के बोलते हैं कि भैया ऐसा बीमारी है, तो वो दवाई देता है मात्रा के हिसाब से, छीटने हम लोग छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, ये मूंगफली में ये भी हमने देखा है कि जैसे जहाँ लगाया वो अगर मिट्टी से उसका पौधा सटा हुआ है तो उस जगह पे भी जड़ निकल जाता है?
1: हाँ,
0: तना में भी?
1: हाँ, लेट हो जाने के बाद निकलता है।
0: निकलता है, उसमें भी मूंगफली आ जाता है ना?
1: आता है,
0: है ना?
1: हाँ, आ जाता।
0: आ जाता। तो फिर आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि क्या कैसे क्या खेती करें तो क्या लाभ होता है?
1: देखिए मूंगफली खेती में लाभ है अगर मेहनत से कीजिएगा।
0: खेती किसी भी तरीके से किया जाए अगर मेहनत से करेंगे?
1: मेहनत कोई भी खेती कीजिए, अगर मेहनत कीजिएगा तभी फल पाइएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो नहीं पाया। अब रोक दिए और कहिएगा कि होगा ना भगवान भरोसे, तो ऐसा नहीं होता है। जिस तरह आदमी का बीमारी का डॉक्टर करना पड़ता है, उस तरह उसको भी देखभाल करना पड़ता है, तभी वो हमारे फसल
0: बढ़िया। हाँ, तो जितेंद्र जी आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखा अभी हम इन सुने थलिए जानकारी, और जानकारी हल है भिंडी के बारे में और मूली के बारे में और मूंगफली के बारे में, और ये अपन अनुभव एकर बारे में कैसे खेती करो हथिन इनकर बारे में बतेलथिन जितेंद्र महतो, और उनकर देखा कि हम इन उनकर अनुभव सुन लिए कि का तरी खेती बाड़ी करो हथिन और लाभ कमाओ हथिन। और देखा कि अभी देखा कि बरसात के समय चलित है और हम इनकर किसान भाई सब इन खेती बाड़ी के साथे साथे पशुपालन भी करो हथिन, और देखा कि हम इनके चाही कि बरसात के समय में कई प्रकार के बर बीमारी पशु सब इनके लग जाए, इसलिए जरूरी हो है कि हम इन सब इन देखा कि ई मौसम में देखा कि सही तरीका से उनकर देखभाल करिए। काहे के कि देखा कि उखिन तो अनबोलता धन हथिन, उनकर तो हम इनके देख करके ही समझे पड़ो है कि उनकर तबीयत खराब है कि का है, उनकर बार बीमारी लगल है, सब देख के ही हम इन समझो और हम इनके तुरंत इलाज करावे के चाहिए। तो ये लिए जरूरी है कि बढ़िया देखभाल करे के जरूरी हुए है, काहे कि ये मौसम में देखा कि कई प्रकार के जीवाणु सक्रिय हो जा हथिन और कै वो सब परजीवी पशु सबके रोग से संक्रमित करते हथिन। एहले हम इनके चाहे कि पशु सब इनके बारिश के समय कौन कौन सा रोग हुआ है, उस सब कैसे हम इनके पशु सब उस सब से कैसे हम इन अपन पशु सबके बचा सको ही है, इस बारे में ध्यान दिए कि जरूरी है। जैसे कि इस समय में मौसम में होए वाला रोग हो है कि जैसे कि गला घोटू रोग हो गलो, ये देखा कि मल्टोसीडा नामक जीव के कारण हो है ये रोग, देखा कि बारिश के दिन में ही देखा कि पशु सब इनके अपन चपेट में ले हथिन, और ये रोग जो देखा लगे से देखा कि शरीर के तापमान बहुत तेज हो जाता है और आंख भी लाल हो जाए, और देखा कि जे पशु सब के जे टांग हो है दोनों टांग के बीच में सूजन हो जाते। एकर अलावे देखा कि ये लंगड़ा बुखार रोग हो है, ये भी देखा कि ये मौसम में काफी संक्रामक और खतरनाक बीमारी हो है, ये रोग के खतरा से पशु सब के ज्यादा रहो है। काहे कि देखा कि जे पशुपालन करो थे जेकर अगर फर्श देखा कि माटी वाला हो है तो जीवाणु वहां जाते जल्दी पनपो है, तो एकर से बचाव खातिर भी जरूरी है कि हम इन अपन सेट के देखा कि नीचे के फर्श हम इन ढलाई करके बना दिए, पक्का बना दिए, ताकि ओकर रोग से बचाव करल जा सके। एकर अलावे देखा कि मौसम में खुरपका मुहपका रोग हो है, ये रोग देखा कि बारिश के दिन में ज्यादा परेशान करो है, और ये रोग में देखा कि पशु सबके मुंह में और जीभ के आसपास छाला पड़े लगो है, ऐसन में ये रोग के उपचार

0: करे के चाही। एकर इलाज में देखा कि खर्च भी ज्यादा हुआ है और देखा कि मौसम में देखा कि पशु सबके दस्त के भी समस्या हो जाए है, तो एकर से भी स्थिति बड़ बिगड़े के ज्यादा खतरा रहो है। तो ऐसे में हम इनके चाही कि समय से इलाज करावे के चाही और एकर अलावे ये देखा कि हम इनके चाही कि रोग से बचावे खातिर कुछ जरूरी बात पर भी ध्यान दिए के चाही। पहले तो देखा कि हम इन पशु सबके टीकाकरण बारिश हुए शुरू हुए से पहले करावे लिए के चाही और कोशिश करे के चाही कि हम इन अपन फर्श के गीला ना रखिए जे पशु सबके है ओकरा साफ रखिए। और एकर अलावे है जब बीमार पड़ जा हथिन तो उस समय देखा कि पशु चिकित्सक से दिखावे के चाही तुरते और उनकर इलाज करावे के चाही। और साथ में देखा कि उन जे पशुशाला हो है ओकर में अभी बारिश के महीना में देखबा कि बड़ी मच्छर उच्छर लगे लगो है, तो कोशिश करे के चाही कि गोईठा जला करके उकरा वहां पे धुआं करे के चाही ताकि मच्छर उस सब इनके परेशान नहीं करते। और आसपास में देखा कि तनी फिनाइल से उकरन के जो पशुशाला है उकरा के धोवे के चाही और साथ में आसपास में फिनाइल डाल दिए के चाही ताकि देखा कि कई प्रकार के जीवाणु आकर के पशु सबके परेशान नहीं करते। तो यह जानकारी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से विदा लिए के समय हो गए, तो हमारा मीनाक्षी के अनुमति देते हैं। जोहार।
1: अभी आप सुने थे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। रांची में आयोजित दो दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। आयुक्त ने जिले में SIR फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। गढ़वा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 98% गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा किया जा चुका है। लोहरदगा के किस्को स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर में 288 बच्चों को मलेरिया की जांच करवाई गई, जिसमें 11 बच्चे संक्रमित पाए गए। संक्रमित पाए गए सभी बच्चों का स्वास्थ्य टीम द्वारा तत्काल उपचार शुरू कर दिया गया है। देवघर श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को निर्बाध मोबाइल नेटवर्क देने के लिए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने समीक्षा की। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को कांवरिया पथ पर अस्थायी टावर लगाने और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने का कड़ा निर्देश दिया है। साहिबगंज में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1,71,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा रही है। इसके साथ ही अगले दो दिनों में सर्वजन पेंशन के लाभार्थियों को भी 3 महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। कार्यक्रम अंगना सुन रहे आप सभी बहनों का

जी पाएं। दुनिया का हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, हाँ लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों को सजगता से निभाते हैं तो कुछ थोड़ी लापरवाह भी दिखाई पड़ते हैं। हम महिलाओं की बातें करें तो हम महिलाएं जिम्मेदारी और कर्तव्य अपने परिवारजनों के लिए काफी अहम मानते हैं, या यूं कहें महिलाएं अपने जीवन अपने परिवारजनों की नींव होती हैं। महिलाएं परिवार के सदस्यों के बीच सहानुभूति और एकजुटता बनाए रखने में काफी ध्यान रखती हैं, सजग रहती हैं। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, नैतिक मूल्य और सामाजिक आचरण देने में भी मां की भूमिका अहम मानी जाती है। बच्चों से लेकर बड़ों और घर के बुजुर्गों के खान पान, दवाइयां, कपड़ों की साफ सफाई और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल भी बखूबी रखती हैं घर की महिलाएं। लेकिन बहनों, अब आ चुका है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में मौसमी संक्रामक बीमारियां लगने की संभावनाएं काफी तीव्र होती हैं। ऐसे में हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही खुद की और परिवारजनों की तबीयत को भी खराब कर सकती है। इससे बचने के लिए हमें आवश्यक सावधानियां बरतनी जरूरी है। तो वे आवश्यक सावधानियां क्या क्या हैं, इस बारे में हम आपसे करेंगे कार्यक्रम में आगे और भी ढेरों बातें। उससे पहले आइए सुनते हैं इस भजन को और कुछ जरूरी संदेशों को भी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: RBI कहता है
5: तरह से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरूरी संदेशों और भजन के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। बनो भजन से पहले, जरूरी संदेशों से पहले हमने आपसे बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियों से बचाव की बातों के बारे में आपसे कहा था और किस तरह से आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए बरसात के मौसम में ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इस बारे में आइए कुछ बातें करते हैं। बहनों, बरसात के दिनों में चूंकि मौसम में काफी नमी होती है, इसीलिए बासी और खुले में रखे हुए खानों को खाने से परहेज करें। कई बार महिलाओं की आदत होती है बचे हुए भोजन को बिना ढक्कन ढके खुले में रखने की। बहनों, ये लापरवाही भी बीमारियों को न्योता देती है। खुले में भोजन रखने से कीड़े मकोड़े पड़ने की संभावना होती है और कई सारे ऐसे जो संक्रामक जीवाणु विषाणु हैं वो इस मौसम में वातावरण में नमी की वजह से वे सक्रिय हो जाते हैं और उन सक्रिय जीवाणु विषाणुओं के संक्रमण से खाने में चले जाने की वजह से भी हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं और बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। साथ ही अब खूब चलन में है स्ट्रीट फूड, यानी कि ठेले रेहड़ी पर मिलने वाले जो चाट पकौड़े और अन्य फास्ट फूड होते हैं उनको खाने की जो चलन है वो अभी काफी चरम पर है। लोग अपने घरों के खानों को खाना कम पसंद करते हैं और ठेले और बाजार के जो तले भुने सामान होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा चाव से खाते हैं, खास करके युवा वर्ग। और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं। तो ये जो मौसम है बरसात का मौसम, ये उन तरह के जो खाने होते हैं ठेले पर मिलने वाले खाने, वो फूड पॉइजनिंग हमारे शरीर में कई बार करवा देते हैं। उन सब खानों को खाने के बाद हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो इससे भी हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है, कोलरा डायरिया जैसे सिचुएशंस आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। ये जो चीज़ें हैं वो ना के बराबर खाएं। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ खाने का तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ घर पर ही आप उसे बना करके ताज़ा खाने की कोशिश करें। और घर में कुछ भी पकाते हैं आप तो वहाँ पे साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, साथ ही जो ताज़े खाने के सामान होते हैं उसका भी उपयोग हम ज़्यादातर करते हैं। बासी खाने जो खराब हो चुके हैं स्पेशली, वैसे खाने हम जानवरों को दे देते हैं। और लेकिन क्या है कि आप बाजार में खाने जाते हैं इन सब चीज़ों को, तो वे कई बार पुरानी चीज़ों को, बासी या फिर खराब सड़े हुए चीज़ों को दोबारा उसको रीयूज कर देते हैं, दोबारा उपयोग में ला देते हैं, उसको नए तरीके से कोई नया डिश बना करके। तो ये भी क्या है कि हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से आप बच कर रहने की कोशिश करें। साथ ही खाना हमेशा ढककर रखा करें और पीने के जो पानी होते हैं वो बरसात के दिनों में पीने के पानी को हमेशा ढककर रखें, उसे 10 मिनट तक उबालें और फिर ठंडा होने के बाद ही उसे पिए, क्योंकि वो उसके बाद ही पीने योग्य बन पाता है पानी। और अगर आप आरओ का पानी, मिनरल वाटर वगैरह आप यूज करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चापाकल वाले पानी यूज करते हैं या कुआं के पानी को पीने के लिए उपयोग में लाते हैं तो उन्हें आप जरूर उबालें फिर पिएं, क्योंकि इससे क्या है कि पानी में भी जो संक्रामक जीवाणु विषाणु होते हैं वो भी पानी उबालने के साथ ही मर जाते हैं, तो वो है हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप हमेशा पानी को छान करके ही पिया करें और फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लाते हैं उसे अच्छी तरह से धोएं और उसे ये देखने की कोशिश करें कि कोई फल सब्जी सड़ी तो नहीं है, सड़े हुए फल सब्जियों को आप ना खाएं या फिर उसे जानवरों को दे दें तो ज्यादा बेहतर होता है, या फिर ज्यादा ही सड़ गया है तो आप फेंक दें, जानवरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं वो कई बार हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचा कर रखती हैं बहनों, तो इन सब आदतों को आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। साथ ही ये जो मौसम है बरसात का मौसम, इसमें आप ताजी दही और ताजे छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि इस समय जो है हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है हमारा वो थोड़ा मंद पड़ा रहता है, मंद हो जाता है मौसम की वजह से। तो आप दही और छाछ का इस्तेमाल करेंगे, वो भी ताजे दही छाछ का, तो प्रोबायोटिक्स इसमें शामिल होता है दही छाछ में, जो हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी बनाता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसके अलावा शौचालय से आने के बाद आप हाथ को साबुन से या फिर हैंड वॉश से जरूर अच्छी तरह से साफ करें। और कई बार ऐसा देखा जाता है बहनों कि गांव में अक्सर ऐसा करते हैं लोग कि शौचालय से आने के बाद या फिर अभी जो

0: कि बरसात का मौसम है तो खेत खलिहानों में भी काम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो खेत खलिहानों में भी काम करने के बाद जब घर में आते हैं तो फिर, या फिर खेत खलिहानों में भी खाना खाने की जरूरत पड़ती है काम के दौरान, काम के बीच में, तो वहां भी लोग ऐसे ही हाथ धो करके और खाना खाने लग जाते हैं। शौचालय से आते हैं तो मिट्टी से हाथ धो करके और फिर खाना खाने लग जाते हैं, तो ये भी गलत आदत है, इससे भी हमें हमें बीमारियां लगती हैं। तो इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अगर आपको काम खेतों में काम करने के दौरान खाना खाना पड़े तो आप साबुन का इस्तेमाल जरूर करें साथ ही, या फिर हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। तो ये सब जो अच्छी अच्छी आदतें हैं इन्हें आप अपनाएंगे तो बरसात के मौसम में आप खुशहाल रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और जब हम खुशहाल रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो हमारा जीवन भी बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही संतुलन के साथ बीतता है। वरना हम कई बार बीमार पड़ने की वजह से आर्थिक स्थिति में भी पड़ जाते हैं, आर्थिक संकट हमारे पास आ जाता है, साथ ही बीमार रहने की वजह से हम जो दैनिक कामकाज हैं या मजदूरी बहुत सारे लोग जो करने जाते हैं उनका भी काम या ऑफिस का भी काम काफी नुकसान पहुंचता है उनका। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें, साथ ही महिलाएं जो हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आसपास बहुत ज्यादा पानी गड्ढों में जमा ना हो, या फिर गमलों में पानी जो जमा हो जाता है बरसात का, वे पानी को भी आप उसे निकाल देने की कोशिश करें, क्योंकि जमे हुए पानी में भी बहुत तरह के मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर जब हमें काटते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। तो इन सब बातों का भी जरूर ध्यान रखें। गीले कपड़े ना पहने, गीले कपड़े पहनने से भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में लगते हैं और वो भी हमें बीमार करते हैं। बेकार पड़े डब्बों और गड्ढों में पानी जमा होने ना दें बिल्कुल भी, और खुले में जो मिठाई बिकते हैं बाजार में वो भी बिल्कुल ना खाएं। इन पर ध्यान रखने को कहें, जिससे हमारी बहनें अपने परिवारजनों को भी ध्यान रखने को कहें इन सारी बातों पर, जिससे आप और आपका परिवार जो है इस मौसम में डायरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियों से बचकर रह सकता है, स्वस्थ रह सकते हैं आप सब। और इन्हीं बातों के बाद अब कार्यक्रम में आगे हम आपको लिए चलते हैं एक वार्ता की ओर, करेंगे हम कुछ और भी बातें। आप बरसात के इस मौसम में रखें बहुत सारे चीजों का ध्यान ताकि आप स्वस्थ रह सकें। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको एक वार्ता। वार्ता का विषय है महिला शिक्षा ग्रामीण विकास की आधारशिला। वार्ताकार हैं सीमा सहाय।
1: वर्तमान युग में महिलाओं की शिक्षा एवं क्षमताओं का संवर्धन न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण है बल्कि देश के आर्थिक एवं समग्र विकास का एकमात्र एवं सर्वोत्तम तरीका है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे की प्रथम शिक्षिका माँ ही होती है, अतः महिला शिक्षा का महत्व द्विगुणित हो जाता है। यह सही है कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित किए बिना उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना संभव नहीं है। महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति संभव है। महिला सशक्तिकरण होने पर ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र के चहुमुखी विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इस तरह से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं को बल्कि संपूर्ण समाज एवं देश को लाभ होगा, आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा। दुनिया में आज भी बेटियों को बेटी की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वर्तमान विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार जरूरी है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार से न केवल आर्थिक स्थिति बढ़ाई जा सकती है बल्कि

0: मातृत्व और मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकती है। इस तरह से बालिका को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका है। यही नहीं, शिक्षा के बल पर ही ग्रामीण बालिकाएं समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता, भेदभाव, शोषण एवं उपेक्षा जैसे दंशों का डटकर मुकाबला कर सकती है। इस तरह से सामाजिक आर्थिक विकास की राह पर अपने कदम बढ़ा सकती है। वास्तव में ग्रामीण महिलाओं को साक्षर एवं शिक्षित करके ही उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाया जाना संभव है, क्योंकि शिक्षित महिलाएं अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए विकास के विभिन्न आयामों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान देती हैं। यही नहीं, बालिकाएं शिक्षित होकर परिवार के लिए कमाऊपुत बनकर परिवार को गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण महिलाओं में, ग्रामीण बालिकाओं में सही दृष्टिकोण, सही विचार एवं सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो सकती है। इस तरह बालिका शिक्षा को परिवार, समाज एवं देश के विकास की नींव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगी। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही स्वतंत्रता के पश्चात पूर्ण साक्षरता प्राप्त हेतु 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकारों में समावेशित किया गया। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील, आंगन पाठशाला जैसे अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित कर रही है। इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के फलस्वरूप पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर कम हो रहा है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर व मिडिल स्तर पर बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है। शिक्षा के प्रसार प्रचार के कारण बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आई है। अतः बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी बालकों की अपेक्षा काफी अधिक है, जिसको नियंत्रित करके ही बालिकाओं का भविष्य सुखमय उज्जवल बनाया जाना संभव है। आज भी शिक्षा के बारे में लैंगिक अंतर बना हुआ है तथा निरक्षर महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। महिला साक्षरता एवं शिक्षा के मार्ग में अनेक अवरोधक हैं, जिनको दूर करके ही अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम गरीबी एवं निम्न आय स्तर की ग्रामीण महिला शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बाधक है। देश की लगभग 26 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इन गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था सर्वप्रथम प्राथमिकता है। सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों एवं कुरीतियों की वजह से भी ग्रामीण बालिका और महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं शिक्षा पर फिजूल खर्ची मानना जैसे तत्व भी ग्रामीण शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बेटी पराया धन है, यह संकीर्ण मानसिकता भी बालिका शिक्षा को हतोत्साहित करती है। इसके अलावा ग्रामीण बालिका विद्यालयों की कमी, विद्यालयों की दूरी, पाठ्यक्रमों में रोचकता का अभाव, घरेलू दायित्व एवं अभिभावकों में जागरूकता का अभाव जैसे तत्व भी बालिका शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंचाते हैं। ग्रामीण जन बालिका शिक्षा पर व्यय को फिजूल खर्ची मानते हुए बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करके उनके भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं। देश के विकास की कुंजी ग्रामीण बालिका शिक्षा एवं महिला साक्षरता ही है। आज ग्रामीण लड़कियों के प्रति भेदभाव, उपेक्षा एवं दोयम दर्जे के व्यवहार को परिवर्तित करना जरूरी है। इस परिवर्तन के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग, संवेदना एवं सहानुभूति परम आवश्यक है। गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी ग्रामीण महिला शिक्षा में सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ये संगठन महिलाओं में उनकी क्षमता, योग्यता एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण महिला एवं बालिका शिक्षा को प्रोन्नत करके देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। किसी भी समाज या देश के विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति, परिवार और समाज के उत्थान में एक साथ उपयोगी भूमिका निभाती है। शिक्षा न केवल हमारे नैतिक विकास में मददगार होती है, बल्कि हमारी भौतिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है।
1: तो अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था महिला शिक्षा ग्रामीण विकास की आधारशिला। वार्ताकार थी सीमा सहाय। तो बहनों, हम उम्मीद करते हैं इस वार्ता से आप जरूर लाभान्वित हुई होंगी। और बहनों, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। साफ सफाई यूं तो हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ और खुश रखने में भी मदद करते हैं, लेकिन साफ सफाई हमारे आचरण और व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। इसीलिए साफ सफाई की जो आदत है उसे आप जरूर अपनाएं, इससे आप अपने बच्चों में भी इस तरह के गुण को डालें ताकि वो भी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे सकें और अच्छी आदतों के साथ भी बड़े हो सकें। बच्चों, बहनों, हम कई संक्रामक बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं अगर साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखें। और अब इसी के साथ ही आप इस बरसात के मौसम में स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, इसके लिए आप आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें। और अब कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त भी हो चला, तो दीजिए श्रोता को इजाजत। कार्यक्रम अंगना से नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना, महिलाओं को संबोधित यह कार्यक्रम होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कुछ भजन।

अनूप चलोटा जी को अभी आप सुन रहे थे इस भजन में। कार्यक्रम में अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप चलोटा, संजय राज और गौरा नंदन की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं कुछ भजन अनुप जलोटा जी की आवाजों में, और आप ट्यून कर रखे हैं 102.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र को। और अब कार्यक्रम के शेष गीत, शेष भजन हम आपको सुनवाएंगे इस जरूरी संदेश के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: भजन बिना तूने हीरा जन्म गवाया, ईश्वर के भजन के बिना, ईश्वर की आराधना के बिना हम जो कार्य करते हैं उसमें वो सुगंध पैदा नहीं हो पाती, वो जादू नहीं आता है जो लोगों को सम्मोहित करता है। इसीलिए कहते हैं कि भजले राधे कृष्ण गोविंद मुरार, उनको भजले और जो कुछ भी करेगा उसमें एक अद्भुत सुगंध आ जाएगी, एक अजीब सा जादू पैदा हो जाएगा और मनुष्य तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारे काम को पसंद करेंगे। आइए इसी भावना को इस भजन में सुनते हैं।

और अब इसी भजन के साथ ही ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और फिर जिले में आजकल, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके माय गॉड पर एक मेल मिला। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा था मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में जाता, लेकिन मैं देख रहा हूँ रेलवे में हर पैसेंजर रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, काले वाले खाते रहते हैं, कौन खाता है नहीं ढूंढते थे वही कहीं रेलवे में तस्वीर है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालते हैं। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है।

मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है, जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताजा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या वर्ष 2014-15 की तुलना में 31% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निवारण पर संतोष जताया।
7: झारखंड में करीब करीब 90% से ज्यादा कार्य हो चुके हैं। चुनाव कार्य पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक कार्य हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह किंतु परंतु नहीं है। जो हमारा कंप्लेन था BLO घर घर नहीं जा रहे हैं, उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि BLO को घर घर जाकर के सत्यापन करना है, न के बूथ पर बैठ करके।

0: रूपी जिला चल रहा है और जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे देने का था मैंने दिया है। आंतरिक संसाधन के जितने भी विभाग थे उनका भी प्रगति संतोषप्रद है, ऐसा कोई मुझे देखने को मिला। होम डिस्ट्रीब्यूशन का डिजिटलाइजेशन होने का तो संतोषप्रद है, शहरी क्षेत्र में कुछ कमी है जिसको हम लोग समय पर पूरा कर।
1: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विकसित किए जाएंगे। इन विशेष केंद्रों में आधुनिक लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रसव संबंधी सभी समग्र स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। नई दिल्ली में आगामी 23 जुलाई को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची के कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड सेवा दल की बैठक हुई। मुख्य संगठनकर्ता नवीन कुमार सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दावोस यात्रा के दौरान जिन कंपनियों के साथ एमओयू हुआ था उन्हीं के साथ दिल्ली में दोबारा एमओयू कर प्रस्तावों की रीपैकेजिंग की गई है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बिना जिंदल स्टील के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के एमओयू पर कड़ी आपत्ति जताई।
2: किनारे में 99,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी जोड़ दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना एक बेहद संवेदनशील विषय होता है आप जानते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की आवश्यकता होती है, वो बिना लिए हुए उन्होंने घोषणा कर दी कि ये निवेश होगा। मैं भीषण कागज का एक टुकड़ा मानते हैं।
1: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता जताई। अभ्यर्थियों ने सभी छात्रों और राजनीतिक दलों के छात्र विंग से राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुट होने की अपील की है। रांची में आयोजित दो दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। उन्होंने समावेशी स्थानीय विकास के लिए पंचायतों और स्वयं सहायता समूह के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
3: पंचायती राज की प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत, हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम है उसमें जीपीडीपी और जो विलेज बीआर पीपीआरपी को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गाँव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है और यह सहभागिता से संभव है, उस पर यह कार्यशाला।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने आज रांची में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्या सिंह से मुलाकात कर विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करने पर चर्चा हुई। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी, हालांकि

0: राज्य में अब भी सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। रांची में 26 जुलाई से शुरू होने वाले डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर खेल सचिव मुकेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। मोरहाबादी स्टेडियम में 16 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन की सुरक्षा और साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आगामी 18 जुलाई को भारतीय थल सेना द्वारा शहर में विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? हाँ। नए झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: प्रस्तुत है जिले

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुमला सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का प्रत्येक महीने की 9 तारीख को निःशुल्क व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है, इसके तहत तो जो मेन ध्येय होता है कि हम लोग वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग एड्रेस करते हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनको हम लोग अस्पतालों तक लाए और अस्पताल में ला करके उनको हम लोग उचित जो एक क्वालिटी सर्विसेज है वो मुहैया करा सके, जो एसेंशियल जो हमारा जांच है वो जांच कर सके, अल्ट्रासाउंड कर सके एवं जो भी दवाएं हैं वो दवा हम लोग उपलब्ध करा सके। आज हम लोग एक भोजन भी देते हैं, वो एक टोकन होता है। एक्चुअली वो टोकन इसलिए होता है कि हम लोग इसी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि यू फर्स्ट, पहले आप खाइए तब अपने घर के और लोगों को खिलाइए, क्योंकि आप गर्भवती हैं और आपको ज्यादा जरूरत है भोजन की।
1: गुमला वन प्रमंडल इस मानसून में आरडीएफ तथा सिविल कल्चर स्कीम के तहत गुमला जिला के अलग अलग क्षेत्रों में 200 हेक्टेयर वन भूमि में 2 लाख से अधिक पौधे लगाएगी। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बिलाल अनवर ने बताया कि
3: 2-3 बारिश और जैसे हो जाएगी, मिट्टी में नमी बढ़ जाएगी, तब प्लांटेशन में कार्य कराया जाएगा। आरडीएफ जो स्कीम हमारा है और सिल्वीकल्चर जो स्कीम है, उसके तहत जहां जहां प्लांटेशन होगा उसके लिए सारी बैकग्राउंड वर्क वो किया जा चुका है। वी एक्सपेक्टिंग कि विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज प्लांटेशन का कार्य जोर शोर से शुरू होगा। तो इस बार 2 लाख से ज्यादा पौधे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, करीब करीब 200 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड में ये कार्य किया जाएगा, जिसमें आपका फॉरेस्ट लैंड में, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन, रिवर साइड प्लांटेशन का कार्य किया जाएगा इस मानसून अगले एक महीने के अंदर।
1: महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग गुमला के संयुक्त तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जीवन परियोजना के 1 वर्ष की प्रगति एवं आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बताया कि
4: ये परियोजना जो 1 वर्ष पहले पिछले जुलाई से

0: जिले में, और ये टाटा प्लस के प्रोजेक्ट इस जिले में संचालित की गई थी। और इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिलों से 6 साल के बच्चों और माताओं के पोषण में कैसे सुधार हो, इसको लेकर ये संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जीवन परियोजना के नाम से। और ये परियोजना 1 साल होने के बाद हमारे सभी ICDS सेंटर्स के सेविका इनके साथ मिलकर इन पर काम किए हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाने और उनका तुरंत इलाज करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
2: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी योजना। संकलन एवं वाचन है प्रकाश कुमार राणा का, प्रस्तुति है राजीव कुमार की और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां सामान्य उपचार के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, आवश्यक जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, इसकी क्या भूमिका है और यह आम जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज हम आप पहुंचे हैं सदर हजारीबाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आइए जानते हैं यहां से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में।
2: मैं डॉक्टर अमरेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर हजारीबाग से हूं, वहां पदस्थापित एवं कार्यरत हूं। अभी हमारे यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरे अंडर में 2 PHC हैं, 16 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। अभी हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और PHC में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से जो भी संबंधित है, जैसे कि ANC हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, डिलीवरी हो गया, उससे संबंधित सभी सुविधाएं सभी सेंटर्स में मेरा उपलब्ध है। साथ ही साथ जो इसके अलावा डेंटल के भी मेरे यहाँ डॉक्टर्स हैं, वो डेंटल का भी कार्य देखते हैं। हमारे यहाँ आयुष के 4 चिकित्सक पदस्थापित हैं जो आपको स्कूल में विजिट करते हैं, आंगनबाड़ी में विजिट करते हैं और वहाँ बच्चों का जांच करते हैं, हम चिकित्सीय लाभ भी प्रदान करते हैं और जो जरूरत होता है उसको रेफर भी किया जाता है। अभी तत्काल में मेरे यहाँ 3-4 प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जैसे से एक प्रोग्राम चल रहा मेरा नन्हा सा दिल। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष के सभी बच्चों का सत्य साई हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से आए हुए चिकित्सक दल जांच करते हैं और जांच करने के बाद अगर किन्हीं में कोई भी जन्मजात हार्ट की बीमारी का पता चलता है तो उनका उन लोग लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं। लाइन लिस्टिंग करने के बाद उनका इको करेंगे, इको के बाद उनको अगर उसमें बीमारी निकलेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से ले जाकर सत्यसाई हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा, उनका ऑपरेशन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बुलाया भी जाएगा और जब जब उनका फॉलोअप भी होगा तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग बुलाते हैं और करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी 100 डेज TB प्रोग्राम भी चल रहा है, उसके अंतर्गत पूरे सदर ब्लॉक में 52 गांव का चयन किया गया है। मतलब यहाँ पहले TB के या तो केसेस थे या वैसे पॉपुलेशन का वास है जिनमें TB होने की संभावना ज़्यादा है, तो वैसे तरह से सभी जगह हमारे यहाँ कैंप लग रहा है। जैसे कि आज भी मेरे यहाँ पौता में कैंप लगा हुआ है जिसमें कि TB के जांच के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य शिविर भी लगा हुआ है। आयुष्मान आरोग्य शिविर का मतलब हुआ कि हम लोग वहाँ पर NCD का भी जांच कर रहे हैं, जितने भी गैर संचारी रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे आपको अन्य भी जो बीमारियाँ हैं उनका भी वहाँ जांच

0: होता है और मुफ्त में उनका इलाज भी और परामर्श भी दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको मुफ्त में एक्सरे की जो पोर्टेबल जो एक्सरे है वो मशीन आई हुई है, उनके द्वारा वहाँ जो भी 14 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं या लाभार्थी हैं उनका एक्सरे किया जा रहा है। और साथ साथ जो भी आपको लक्षण वाले हैं, लक्षण में जैसे हो गया जिन्हें को 2 सप्ताह से खांसी हो, जिनको 2 सप्ताह ज्यादा बुखार हो, जिनका वजन घटता हो, जिनको खांसी में खून आता हो, जिनको थकावट लगता हो, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, या जिन्हें को गला में गांठ उठो, जो भी चीज़ हो, उन सब का भी वहाँ जाँच किया जा रहा है। और जाँच में जिनको लक्षण है उनको वहाँ तत्काल उनका बलगम लिया जा रहा है और उसको ट्रूनेट और नेट से जांच किया जाएगा और जांच में पॉजिटिव आने पर उनको टीबी की दवाइयां चलेगी। साथ साथ हम लोग एक और जांच करते हैं CYTB स्किन टेस्ट। इसमें वैसे जो लाभार्थी हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है उनका हम लोग जांच करते हैं और इससे पता चलता है कि उनमें टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं, बीमारी नहीं, लक्षण की बात नहीं है। अगर उनमें संक्रमण है तब भी हम लोग उनको TPT देते हैं, माने TB प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, जिससे कि उनका सही से समय पर इलाज हो। और हमारा जो अभी जो लक्ष्य चल रहा है कि टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत टीबी मुक्त झारखंड और टीबी मुक्त पंचायत को बनाना है, उसको हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने जैसे 15 और 18 तारीख को हमने राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया, जिसमें कि 1 से लेकर 19 तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को हम लोग कृमिनाशक दवाई खिलाए हैं। और 28 तारीख से लेकर 30 तक एक नेशनल वाइड प्रोग्राम चल रहा है हमारा पल्स पोलियो, जिससे कि सभी लोग जानकार है, सभी लोग जान रहे हैं। पिछला जो हमारा पल्स पोलियो हुआ था वो अगस्त 24 में हुआ था, उसके बाद हम लोग अभी कर रहे हैं। 28 जून को बूथ पर हम लोग बच्चों को दवा पिलाएंगे, 0 से 5 साल के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं के लिए एक तो सुविधा जो केंद्र सरकार प्रायोजित है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, उसके तहत हर माह के 9 तारीख को हम लोग गर्भवती महिलाओं को बुला करके जाँच करते हैं। और उसमें अगर कोई अति जोखिम वाली महिलाएं मिलती हैं, जैसे कि जिनका पूर्व में सिजेरियन हो गया हो, जिनको इनके साथ कोई भी डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कोई अन्य बीमारी हो, जिनका जुड़वा बच्चा हो, जिनको अगर बच्चा का पोजीशन अगर सीधा हो, माने जिनको प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में डिलीवरी के समय दिक्कत होगी, उन लोग हाई रिस्क को हम लोग अलग से महीना के अंतिम बुधवार में हम लोग उनका भी जाँच करते हैं। और जाँच यहाँ मुफ्त में होता है, यहाँ जाँच के अलावा उनका जो भी आपको अल्ट्रासाउंड हो गया चाहे ब्लड की जांच हो गया वो हम लोग यहाँ मुफ्त उनको सेवाएं देते हैं। और ये सेवाएं आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ साथ हमारा PSC में भी उपलब्ध है। हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें बहुत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मेरे CHO वहीं रहती है
1: जी,
0: तो वैसी स्थिति में वहाँ तो मिलता ही मिलता है। अभी जो बरसात का समय आने वाला, अभी तो देखिए मलेरिया नाशक माह मना रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग को बचना ही है। जैसे फुल बांह, फुल पैंट जो पहनना, हमको कपड़ा पूरे बदन को ढक के हमको पहनना ही है। साथ साथ कहीं भी बारिश का पानी जमा हो रहा है, चाहे टायर में, गमला में, कहीं भी, चाहे कूलर में, उसको समय पर बदलिए, उसको पानी को हटाइए, वो हमको देखना है। अगल बगल को साफ सफाई करना हमको है, जहाँ भी गंदा पानी, जहाँ की चापाकल का पानी पी रहे हैं या कुआं का पानी पी रहे हैं उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डलवाइए और चापाकल का पानी आप छान के पीजिए।
2: आज की इस बातचीत में हमें यह समझने का अवसर मिला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाकर हम स्वयं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। कहा जाता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस भावना को सबसे अधिक साकार करती है यहाँ की नर्सें। स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले हर मरीज की देखभाल, सही समय पर उपचार, गर्भवती महिलाओं की निगरानी, नवजात शिशुओं की सुरक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने में नर्सों की अहम भूमिका होती है। उनकी मेहनत, संवेदनशीलता और समर्पण से लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। आइए आज जानते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की नर्स की क्या भूमिका होती है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
3: नमस्कार, मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं एक ANM हूँ। मैं मेरू आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यहाँ पे हर चीज का निशुल्क उपचार होता है, जैसे BP शुगर हो गया, ये सब चीज का जांच होता है, मलेरिया टेस्ट होता है, यहाँ पे मुफ्त में दवाई दी जाती है। किसी तरह का भी कोई लोकल प्रॉब्लम हो, जैसे छोटा मोटा बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब का यहाँ पे इलाज होता है। यहाँ गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे चिकित्सा के रूप में बहुत सारे लाभ मिलते भी हैं, जिसका वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जो बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं उन लोगों को स्टिक, वाकर, ये सब वगैरह भी यहाँ से वितरण किया गया है। और बहुत सारे प्रोग्राम है किशोर किशोरी को लेके, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका बहुत सारा प्रोग्राम भी चलता है। नमस्कार।
1: मेरा नाम अनीता कुमारी है और मैं यहाँ मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक नूरा में एनएम हूँ। और हमारे यहाँ टीकाकरण होता है जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक। और हमारे यहाँ मतलब दो डॉक्टर भी हैं, एक गायनो और एक आयुष की मैम है। और बच्चे लोगों को भी इलाज होता है यहाँ पे। गर्भवती जो होती है उनका भी यहाँ टीटी का इंजेक्शन पड़ता है और आयरन की दवा और ये कैल्शियम, ये सभी दवा उनको मिल जाती है। ये सुविधाएं उपलब्ध होती है यहाँ पे। और बच्चे लोगों को जो फीवर वगैरह आता है वो सब की दवा भी यहाँ पे मिल जाती है। 0 से लेकर के जो BCG होता है उस समय से लेकर 16 साल के इस तक जो पड़ता है इंजेक्शन टीकाकरण, वो सारे सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। जो मौसमी जो बीमारियां आती है ये सबसे बचाव के लिए तो टीकाकरण मतलब किया जाता है। तो उससे बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए, ये सारी मतलब की बचाव के लिए सारा टीकाकरण यहाँ पे पड़ता है। और गर्भवती माता को टिटनेस का जो मतलब होता है वो बच्चे को और माँ को दोनों की सुरक्षा के लिए टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे जो मैडम लोग रहती है ना, डॉक्टर मैडम जो है, वो यहाँ पे जैसे कि नूरा से या फिर और भी कहीं से भी अगर कोई आते हैं तो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह उपलब्ध है, चेकअप वगैरह होता है और जांच वगैरह भी होता है यहाँ पे। हमारे यहाँ LT है और NM है, सब है। तो हर प्रकार की मतलब जो सुविधाएं हो पाती है यहाँ पे सब हो जाती है।
4: हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है खिरगांव हबीबीनगर से। मेरा नाम काजल कुमारी हुआ। हम आंगनबाड़ी केंद्र में जो गर्भवती न्यू मैरिड लेडी रहती है उसको जाके डोर टू डोर प्रशासन करते हैं कि ताकि वो आए और आंगनबाड़ी से जुड़े। आंगनबाड़ी में जुड़ने में बहुत सारी लाभ मिलती है, जैसे कि NC जांच हो गया, आयरन गोली, कैल्शियम टैबलेट, ये सब हम लोग की सुविधा आंगनबाड़ी से मिलती है। वो लोग जानते हैं कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सही है, इनके द्वारा ही हमको संपर्क करती है या फिर हम ही उनको, न्यू मैरिड रहती है चाहे बच्चा रहता है, हम जानते हैं कि उसके घर में छोटा बच्चा है तो हम उनको घर में जाके बुला के बोलते हैं कि आपको सुई पड़ेगा, आप आइए। जैसे कि अगर सदर में हुआ, सदर सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो वहीं से बन जाता है, हम लोग खुद बनाते हैं। और अगर नगर प्राइवेट में हुआ तो नगर निगम की द्वारा ही बनती है। सदर हॉस्पिटल में हुआ तो वहाँ से 1000 प्रत्याशन राशि मिलता है, उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र भी वहाँ से मिलकर बनता है और वहाँ एक पैसा नहीं लगता है।
2: सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने में स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन सेवाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क या रियायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों की नर्सें और अन्य स्वास्थ्य कर्मी इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाते हैं, पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराते हैं और उन्हें समय पर सेवाओं का लाभ दिलाने में सहायता करते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इस सरकारी योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए और उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं तभी सफल होती है जब हर व्यक्ति तक उनका लाभ समय पर पहुंचे। जागरूक नागरिक और समर्पित स्वास्थ्य कर्मी मिलकर एक सशक्त, खुशहाल और समाज का निर्माण करते हैं। स्वस्थ समाज का निर्माण केवल सरकार से नहीं बल्कि हर नागरिक की जागरूक पहल और जिम्मेदारी से होता है। स्वस्थ समाज का निर्माण केवल सरकार से नहीं बल्कि हर नागरिक की जागरूक पहल और जिम्मेदारी से होता है। जब लोग स्वयं आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं तभी बदलाव की नई शुरुआत होती है। आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।

वाचन एवं संकलन था प्रकाश कुमार राणा का, प्रस्तुति थी राजीव कुमार की और इस कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुछ भजन।

समस्त कल्याण गुणा विराम सीता मुखाम्बुरुः चञ्चरीकः।

अनुराधा पौड़वाल की आवाज में गाए इसी गीत के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम आपकी चाहत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं बाजार फिल्म से भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

भूपेंद्र सिंह को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी बाजार, और इस गीत को पसंद किया था आप सभी दोस्तों ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप कमरुल्ला, नसीम, आयसा, हदिया, आसमा, सालिया, शोएब, मुजतबा, राउफ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से इसी गीत के लिए खत लिखा था रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। महादेव घाट अमलेश्वर से इसी गीत को पसंद करने वाले थे आप सभी श्रोता। आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति और रेहांस ठाकुर। इसी गीत को पसंद किया था भादोड़ी झुमरी तिलैया से आप हैं उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र पांडे, अनिल चंद्र पांडे, साकेत, शुभम, नर्मदा, अक्षता, प्रियंका पांडे, शम्मी पांडे और अपराजिता पांडे। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम प्यासा, आवाज हेमंत कुमार की, पसंद आप सभी दोस्तों की। बहादुरपुर जलगांव से आप हैं संतोष कुमार, नरेंद्र दंड ग्वालकर और रविंद्र सुनार, सन्नी मुन्ना और इनके परिवार के सभी सदस्य। एक खत आया है मेन रोड बड़का गांव से, आप हैं दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष, विकास, रंजना, गुड़िया, गोलू, भोलू और इनके मम्मी पापा। इसी गीत के लिए फरमाशी खत आया। ईशान हुसैन, मुताहिर हुसैन, माहिर और बुशरा हुसैन का। आप सभी हैं मनसा कॉलोनी से। दुर्गाई सेलू से आप हैं चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से सी आर कुलकर्णी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो आइए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम प्यासा, आवाज हेमंत कुमार की।

श्रीवास्तव। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा छत्तीसगढ़ से, शिवाजी चौक से आप हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम अलग अलग, आवाज लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अनार्ख, कली फिल्म से लिया हुआ, हेमंत कुमार की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा है रामगढ़ कैंट रांची रूट से आप हैं अरविंद कुमार, आशीष, अर्जुन, रीता देवी, गणपति रविदास, रितार्जुन और AR अकेला। इसी गीत के लिए फरमाशी खत भेजा आप सभी दोस्तों ने। आप हैं मधुबनी बिहार से शोभिकांत झा, हेमलता, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित, परी, सरोज, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी, अर्चना, विवेक और SK सज्जन ने। सरोज चौक अमरावती से ये खत आया नसीम।

बेगम, सालिया सोएब खान और रफूक अंसारी का। ओरिया हजारीबाग से आपने भी इसी गीत को पसंद किया है। आप हैं दीपक कुमार, अंजलि, रुपेश, ऋषभ, वंदिता, पवन, शिखा, सार्थक, ईरा। शिवपुरी हजारीबाग से इसी गीत को पसंद किया रीता सिन्हा, कुणाल, काजल, वायु, सबिता, अजय और इनके ढेर सारे साथियों ने। तो हम आपको सुना रहे कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम अनारकली, आवाज हेमंत कुमार की।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है सरस्वती चंद्र। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम पोचरा से आप हैं महेश राम, सरिता देवी, फुलवासी देवी, कुमारी वर्षा, पिंटू कुमार और परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव और साइना शर्मा। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा एकता कॉलोनी रोहतक से आप सभी श्रोताओं ने सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोध, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एस आर कांगड़ा ने। एकता कॉलोनी रोहतक से ही आपने भी फरमाइशी खत भेजा आप है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र, आवाज लता मंगेशकर की।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म पूनम से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और इस गीत को पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। पचमंदिर रोड हजारीबाग से आप हैं कलाम अहमद आरजू, निलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद, हबीबा खातून, इरफान अहमद, शबाना परवीन, फिरोज अहमद और शमा परवीन आरजू का। इसी गीत के लिए फरमाशी खत भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और परिवार के सभी सदस्य, दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और लेवाई से गुलाब दास माणिकपुरी ने भी इसी गीत को पसंद किया है। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, आप सबों ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम पूनम, आवाज लता मंगेशकर की।

आइए एक बार फिर से सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है मासूम। और इस गीत के लिए फरमाशी खत आया कृष्णापुरी मटवारी हजारीबाग से आकाशी अक्षतराज, कान्हा, आराध्या, आरजू, दीक्षा, आकृति, रिद्धि, सिद्धि, सुहानी, संध्या, राम और इनकी परिवार के सदस्यों के द्वारा। इसी गीत को सुनना चाहा है धूरा बांध भाटापारा से आप है प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू ने। इसी गीत के लिए हमें खत भेजा दौलत बाग से जाफर हुसैन, नैया बेगम और कासिम अली ने। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम मासूम, आवाज लता मंगेशकर की।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, आप सभी दोस्तों की पसंद पर। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44 और आवाज है हेमंत कुमार की। पसंद है आप सभी दोस्तों की। भंडार शिवानी कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं, सुभाष चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। सालर पहलगांव काश्मीर से इसी गीत को पसंद किया। पीरजादा मेहरजुद्दीन कैशरदीन और नजमदीन ने भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, प्रमिला और ज्योति श्याम कुंवर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहराज जहां आप सभी हैं, लक्सर हरिद्वार से। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनी गवाणकर बहादुरा नागपुर से आप सभी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर ने भी खत भेजा इसी गीत के लिए। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने भी सुनना चाहा है इसी गीत को। देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा कुमारी, निशा प्रकाश और देवेंद्र जी ने भी इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा। झुमरी तलैया से आप है संजय कुमार गुप्ता और झुमरी तलैया से ही हैं आप जगन्नाथ प्रसाद साहू। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम हाउस नंबर 44।

हेमंत कुमार की आवाज में गाए फिल्म हाउस नंबर 44 के इस गीत के साथ ही फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या के आज का अंक न्यूज एट 9 और स्पॉटलाइट, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 9:30 से रात्रि 10 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो हमारे इन प्रसारणों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के

0: विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की

0: उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। एआई आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला यह एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
2: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
2: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमू केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में

0: इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland from today. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो।

0: तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर,
1: जिसे दुनिया चंदन टाकू के नाम से जानती, और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो क्या चाहती हो?
2: मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे?
1: मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख।
2: मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आप खिकोटे पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूँ।
1: फिर क्या चाहिए?
2: इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सच जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं, आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं।
1: तुम में किसी शरीफ का खून है, ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वायदा करता हूं, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, बेझिझक उसके साथ चली जाना।
0: सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमारा में जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी।
3: आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है।
4: दुकान बंद है?
3: किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश।
4: अरे मैं क्यों खुश भाई?
3: हम जो बनते हो, आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर पुशर बातें करते, तो पूछते मुझसे होगे खुशी किस बात की।
4: किसने कहा तुझे ये सब?
3: एक काले कौए ने।
4: काले कौए ने?
3: हाँ, सुबह ही सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है।
4: साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे?
3: अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूँ?
4: किस चीज का?
3: अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का, बाजे का, बारात का।
4: बस बस बस, प्यारे भैया यही तो तुम में एक कमजोरी है।
3: क्या?
4: आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी।
3: अरे भैया जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी, एक बार मुझे उससे मिला दो
4: ताकि तू अपनी बड़बड़ शुरू कर दे।
3: अरे भाई तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन सुनो, गुस्से मत हो। अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

0: जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले हम तो खुश नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोले।
1: लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोग वश प्राण की मुलाकात दलसुख पंचोली की यहाँ नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दलसुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी।
2: कैदी नंबर 602
3: हाजिर है।
2: सर झुकाकर बात करो।
3: यह सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा।
2: बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं।
3: तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है।
2: लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस।
1: सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुईं, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

0: मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला।
1: मेरे बात करने का तरीका गलत था।
2: तरीका छोड़ो साहेब, बात गलत था। anyway, have a drink. कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा।
1: नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता।
2: पर हम तो 24 घंटा पीता है साहेब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू व्यक्ति। लेट गो, कोई मतलब का बात है? बोलो।
1: आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बर्गेंद्र। मैं पूछने आया हूँ आपको कितना पैसा चाहिए।
2: हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं।
1: बिल्कुल ठीक सुनाया आपने मिस्टर बर्गेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000।
2: पैसा का किताब लेकर आया तुम? मैन तुम वेट, यू वेट मिस्टर नाथ, अभी बताता है तुमको, यू वेट। पैसा मनी मनी मनी, तुम क्या समझता पैसा तुम्हारे पास? पैसा हमारे पास नहीं, देखो। लेकिन तुम बड़ालों के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। अगर हम छोटालों के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना, उसको हम बेचता नहीं है, समझा तुम?
3: बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा।
1: इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे?
0: फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई, और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गई।
4: तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है?
5: ठीक ही है, पर तू कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा?
4: वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना,
5: वो हितोपदेश पंचतंत्र में से।
4: हो, कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई।
5: कौन सी?
4: वो गीदड़, बिल्ली और खरगोश की।
5: हाँ हाँ,
4: जहाँ गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे।
5: हाँ, क्या बात है, दूसरे क्यों देख रहा? कहने का चाहता है
4: यही कि खरगोश अब भी संभल जा, वरना फंस जाएगा। दो दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
0: करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है,

समझ लो इसमें।

0: कर समझो, राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो।
1: राज की बात कह दो जान में।
2: एक तरफ होते दिलीप कुमार देव आनंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण।
3: सच का झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम गाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह, अरे गोलू गवाह AWD मतबल एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया?
4: आया सेठ रतिराम।
3: आओ सेठ रतिराम मलंग, हमें क्या करना होगा काम?
4: तलाक का है काम, बीवी पर बचलने का इल्जाम।
5: मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले।
3: अरे सतनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं की।
5: गुल, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है।
3: सेठ अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम, अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो
4: एक नंबर का यास है सेठ।
3: अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट।
6: गोलू भैया।
3: अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई?
6: सेठ रतिराम की बीवी हूँ, 3 बच्चे लेकर कहाँ जाओ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं।
3: ओ भाई ये हमें नहीं मालूम, हमारा तंदा गवाही देना, तू ज्यादा पैसे दे दे।
6: उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं।
3: ओ, यही तो मुसीबत है। ये ले फड़ अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा।
2: हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रही।

0: फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई।
1: देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।

0: प्राण जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की कली, पूजा के फूल और हाफ टिकट।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: वो गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय

0: सवरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे, खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कुमार सानू और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी कानून। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं मन्ना डे की आवाज में।

0: कभी तो हंसाए।
1: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम में आगे फिल्म आराधना का ये खूबसूरत गीत।

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्स और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम आपको सुना रहे हैं नीलकमल फिल्म से, आवाज आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फिल्म से। कार्यक्रम एक फिल्म से सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से के अंतर्गत वर्ष 1993 में आई फिल्म मेहरबान के कुछ चुनिंदा गीत।

के रविशंकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेत्री आयशा जुल्का, अभिनेत्री शांति प्रिया, अनुपम खेर और सदाशिव अमरापुरकर। दोस्तों हम आपको बता दें ये फिल्म जो है फिल्म मेहरबान ये तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है और इसके जो गीत है वो काफी लोकप्रिय रहे। आइए हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम एक फिल्म से। और आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेहरबान के कुछ चुनिंदा गीत। दोस्तों, हम आपको बता दें, फिल्म मेहरबान के सभी गीतों को कंपोज किया दिलीप सेन, समीर सेन, और गीतों के बोल लिखे रानी मलिक, महेंद्र देहलवी, माया गोविंद और दिलीप ताहिर ने। आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से और हम आपको आज सुनवा रहे हैं वर्ष 1993 में आई फिल्म मेहरबान के कुछ गीत। दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म के सभी गीतों को अपनी खूबसूरत आवाजों से सजाया सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडेकर, विनोद राठौर और सुदेश भोसले ने। आइए हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौर और साथियों की आवाजों में गाए फिल्म मेहरबान के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यही समाप्त होता है। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फिल्म से और आज हम आपको सुना रहे थे फिल्म मेहरबान के कुछ चुनिंदा गीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi